जय गुरु भाई बुनो, आप सब नु हनुमान स्वागत करो हूँ हमारी आज ने परबात नी सभा में। आप सब हमरी रिया हो आपनो सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM माते। मैं हूँ आपने हाथे आपनी बुनंजलि पारेश्वर ने आज वार रविवार। भाई बुनो हमें देखी रहे हो कि अपने स्टूडियो ने घड़ी में परबात ना छह बाकी के हैं। तब आप शुरुआत करो परबात नी सभा में प्रसारित थवा वाला कार्यक्रमों ने संक्षिप्त रूपरेखा। सभा ने शुरुआत करेंगा सप्ती की पहले भक्ति श्रद्धा ने आस्था तक जुड़ू कार्यक्रम आराधना तक इना में अपना हमरंगा आज न सुविचार निहाते भक्ति में गीतन में इस कड़ी में अपने बीजा कार्यक्रम ने शुरुआत करेंगा ठीक 6:30 माते कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा। अन में अपने जानेंगा अपने महापुरुषों ने जीवन तक जुड़ी घना कानी बातें यह कार्यक्रम लेने आवेगा। हूँ एटले अपनी बुनंजलि पारेशर मारे हाथ रहेगा मारे रेडियो साथी जागृति भट्ट। इस कड़ी में अपना गाड़ी बढ़ेगा प्रेरणादायी कहानियों तक की जुड़ू कार्यक्रम कथा कहानी। आ कार्यक्रम आप हमरी शकोगा ठीक हाथ वगे प्रस्तुत करता जागृति भट्टी हाथी। इस कड़ी में बीजू कार्यक्रम शुरू थागा जेने के बालकनु बालपन एटले कार्यक्रम बात निधि लोकी। आ कार्यक्रम आप हमरी शकोगा ठीक हाथ वगी ने 30 मिनट माते आ कार्यक्रम लेने आवेगा हमारे रेडियो साथी। इस कड़ी में अपना गाड़ी बढ़ेगा अपने अतिथियों तक की जुड़ू कार्यक्रम हमारे मेहमान। आ कार्यक्रम आप हमरी शकोगा ठीक 8 बजे प्रस्तुत करता अंजलि पारेश्वर ने हाथी। अनस क्रम में अपने आगाड़ी बढ़ेगा अपने गांधी जी ने विचारों तक की जुड़ू कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन। आ कार्यक्रम आप हमरी शकोगा ठीक 8:30 माते भाई बनो बीजो कार्यक्रम शुरू थागा ठीक 9 बजे कार्यक्रम दादी माँ की रसोई। इनमें आप हमरोगा अपने परंपरागत व्यंजनों की विधि निवारा में यह कार्यक्रम लेने आवेगा हमारे रेडियो साथी। इन्हे साथे शुरू थागा कार्यक्रम हम और हमारा संविधान। आ कार्यक्रम आप हमरी शकोगा ठीक 9:30 माते आ कार्यक्रम लेने आवेगा हमारे रेडियो साथी जागृति भट्ट ने मुँह आपनी बूंद अंजलि पारेश्वर। भाई बनो ठीक 10 तक की 1 बजे थागा मनोरंजन की भरमार जिनमें 10 तक की 11 बजे आप हमरोगा कार्यक्रम फिल्म संगीत जिनमें आप हमरी शकोगा फिल्मी गीतन नवा ने जुनो गीतन। इन्हें बाद भाई बोनो ठीक 11 तक की 12 बजे ने वैस में आप हमरोगा राजस्थानी गीत माते आधारित कार्यक्रम लोक संगीत। 12 तक की 1 बजे उदी आप हमरी शकोगा भूले बिसरे नगमो ने हाथे फिल्मी गीतन नवा ने जुनो गीतन। तो भाई बोनो आ तो हती अपने प्रभात की सभा में प्रसारित थवा वाला कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हवे अपने सभा की शुरुआत करा भक्ति श्रद्धा ने आस्था तक जुड़ू कार्यक्रम आराधना थकी।

0: आज के सुविचार।
1: मनुष्य का जीवन हार और जीत, विजय और पराजय, सफलता और असफलता के मध्य झूलता रहता है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, है ना? जब आप सफल होते हैं, किसी चुनौती पर विजय पाते हैं, तो मन प्रसन्नता से आनंद के उपवन में झूमने लगता है। और जब आप असफल होते हैं, तब मन दुख और पीड़ा के सागर में डूबने लगता है। परंतु वास्तव में सफलता और असफलता है क्या? तनिक ध्यान से सोचिए, ये केवल हमारी मनोस्थिति मात्र है। हमारी पराजय तब नहीं होती जब हमारा शत्रु विजय प्राप्त कर ले। हमारी पराजय तब होती है जब हम पराजय स्वीकार कर ले। हम असफल तब नहीं होते जब हम लक्ष्य ना पा सके। हम असफल तब होते हैं जब हम प्रयास करना बंद कर दें। इसलिए प्रयास करते रहें और हार ना माने, क्योंकि जिस दिन आप हार स्वीकारना बंद कर देंगे, जीत आप

0: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
1: जागृति बुन आपने कार्य सोचू है, अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है?
2: नाना अंजलि बुन हूँ था का?
1: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदिये है ये हुके जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
2: ओ अंजलि बुन एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
1: होवे जागृति बुन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
2: होवे अंजलि बुन आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा।
1: होवे होवे जागृति बुन आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचाओ पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो, जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
0: वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: भाई ने बोनो आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ नी छाव में आपड़े रह हां या आपड़े नी कितनी शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल हां ई भी आपड़ा थकी कई आश रागे है। होवे अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा, प्रकृति आपड़ी जरूरत नती बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
1: होवे प्रकृति ने बचावो भविष्य ने हदारो।
3: होवे आज नाना नाना कदम है ई अब्बा वाला काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
0: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

साथियों, संघर्ष से सफलता तक, अन्याय से न्याय तक मानवता की राह पर चलने वाले महान व्यक्तियों को हमारा नमन है।

0: साथियों, इस गीत के बाद और चंद पंक्तियों के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम कथा में। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
1: और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
0: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
1: नमस्कार।
0: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं जागृति जी कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा को लेकर, एक नए व्यक्तित्व की जीवन परिचय को लेकर। आशुता साथी, इस कार्यक्रम में हम ऐसे महान व्यक्तित्व की बात करेंगे जिन्होंने ये साबित कर दिया कि नफरत का जवाब नफरत से नहीं बल्कि प्रेम, धैर्य और न्याय से भी दिया जा सकता है।
0: बिल्कुल,
1: आज का हमारा विशेष कार्यक्रम समर्पित है नेशनल मंडेला को। हम बात करेंगे जागृति जी आज कार्यक्रम के माध्यम से कि किस तरीके से उन्होंने साहस, दृढ़ संकल्प और सेवा भाव से पूरी दुनिया में बदलाव लाया था। तो श्रोता साथियों, महापुरुषों का जीवन केवल इतिहास नहीं होता है बल्कि जागृति जी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी होता है।
0: बिल्कुल,
1: मंडेला का जीवन भी हमें यही सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि इरादे मजबूत हो तो असंभव भी संभव हो जाता है।
0: जी हाँ अंजलि, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं ऐसे महान व्यक्तित्व की जिन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय अन्याय और भेदभाव के खिलाफ संघर्ष में बिताया। एक ऐसा नेता जिन्होंने जेल की सलाखों के पीछे 27 वर्ष बिताने के बाद भी अपने मन में बदले की भावना नहीं रखी।
1: बिल्कुल,
0: एक ऐसे इंसान जिन्होंने दुनिया को ये सिखाया कि क्षमा, समानता और मानवता ही सच्ची ताकत है। हम बात कर रहे हैं दक्षिण अफ्रीका के महान नेता नेल्सन मंडेला की। श्रोताओं,
1: बिल्कुल,
0: नेल्सन मंडेला केवल एक राजनेता नहीं थे बल्कि वे न्याय, स्वतंत्रता और मानव अधिकारों के प्रतीक थे। उनका जीवन हमें ये सिखाता है अंजलि कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी यदि व्यक्ति अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ रहे तो वो इतिहास बदल सकता है।
1: बिल्कुल चक्रवर्ती जी, आपने सही कहा। मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका के मेवेजो गांव में हुआ था। जागृति जी, उनका पूरा नाम रोलिल्ला मंडेला था। रोलिल्ला का अर्थ है वह व्यक्ति जो व्यवस्था को चुनौती देता है। बचपन में शायद श्रोता साथियों किसी ने नहीं सोचा होगा कि यही बालक आगे चलकर पूरी दुनिया को न्याय, समानता और मानव अधिकार का सबसे बड़ा प्रतीक बनाएगा।
0: बिल्कुल,
1: मंडेला का परिवार शाही वंश से जुड़ा हुआ था, लेकिन जागृति जी उन्होंने आरामदायक जीवन की बजाय संघर्ष का रास्ता चुना। बचपन से ही वे अपने नेतृत्व के गुण दिखाते थे। गांव की बैठकों में वे बड़े बुजुर्गों के लोगों के साथ समस्या सुनते थे और मिलकर समाधान खोजते थे। यहीं से उनके मन में समाज के लिए काम करने की भावना विकसित हो गई थी।
0: बिल्कुल अंजलि, जैसे कि मंडेला जी के बचपन के बारे में बात करें तो श्रोताओं, मंडेला बचपन से ही जिज्ञासु और समझदार थे। उनके परिवार ने उन्हें शिक्षा का महत्व समझाया। गाँव के साधारण वातावरण में पले बड़े मंडेला ने बचपन से ही समाज में मौजूद असमानताओं को देखा और महसूस किया।
1: बिल्कुल,
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय मिशनरी स्कूल में हुई। बाद में उन्होंने फोर्ट हेयर विश्वविद्यालय और विटवा टर्सेंड विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। उन्होंने कानून की पढ़ाई की और आगे चलकर वकालत को अपना पेशा बनाया।
1: बिल्कुल
0: अंजलि, रंग भेद की व्यवस्था और उसके प्रभाव को लेकर हमारे श्रोता साथियों को हम बताएं तो श्रोताओं, जब मंडेला युवा थे उस समय दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति लागू हुई थी।
1: बिल्कुल,
0: इस नीति के तहत अश्वेत लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा जाता था। अश्वेत नागरिकों को अलग बस्तियों में रहने के लिए मजबूर किया जा रहा था। वे स्वतंत्र रूप से यात्रा नहीं कर सकते थे और उन्हें मतदान का अधिकार भी नहीं था। मंडेला ने इस अन्याय को बहुत करीब से देखा। उन्होंने महसूस किया कि यदि समाज में समानता स्थापित करनी है तो इसके लिए संघर्ष करना ही होगा।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो यहीं से उनके संघर्ष की शुरुआत हो जाती है। युवा अवस्था में मंडेला ने कानून की पढ़ाई की और वकालत शुरू कर दी। उनका उद्देश्य केवल श्रोता साथियों मुकदमे लड़ना नहीं था बल्कि उन लोगों की मदद करना था जिन्हें न्याय नहीं मिल रहा था। वे लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने लगे। उन्होंने अनेक आंदोलनों में भाग लिया और लोगों को एकजुट भी किया। उनका विश्वास था श्रोता साथियों कि समाज में बदलाव तभी आएगा जब लोग अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी समझेंगे।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन जैसे जैसे उनका आंदोलन मजबूत होता गया, सरकार ने उन्हें अपना विरोधी मानना शुरू कर दिया। उन्हें बार बार गिरफ्तार किया गया, उन पर मुकदमे चलने लगे। और उन्हें आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई। लेकिन दोस्तों यहीं से उनके जीवन का सबसे कठिन और सबसे प्रेरणादायक अध्याय शुरू होता है।
0: बिल्कुल अंजलि, अगर स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी को लेकर हम बात बताएं तो 1944 में नेल्सन मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। ये संगठन रंगभेद के खिलाफ संघर्ष कर रहा था। मंडेला जी ने अपने साथियों के साथ मिलकर लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया। उन्होंने शांतिपूर्ण आंदोलन सभा और जन जागरण कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया।
1: बिल्कुल,
0: उनका उद्देश्य केवल अश्वेत लोगों के अधिकारों की रक्षा करना नहीं था बल्कि एक ऐसा समाज बनाना था जहां सभी नागरिकों को समान अवसर और सम्मान मिले। धीरे धीरे मंडेला जी ने रंगभेद विरोधी आंदोलन के प्रमुख नेता बन गए। उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी और वे अन्याय के खिलाफ संघर्ष की आवाज बन गए।
1: बिल्कुल, तो जागृति जी, जैसा कि कार्यक्रम में हम श्रोता साथियों से मंडेला के जीवन परिचय को लेकर ढेर सारी बातें कर रहे हैं, ये बातें आगे भी श्रोता साथियों से यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन क्यों ना हमारे साथियों को हम यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत सुनवा दें।
0: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा में। जैसा कि जागृति जी, गीत से पहले हमने जाना कि किस तरीके से मंडेला का संघर्ष शुरू हुआ था। यहीं दोस्तों कहा जाता है कि किसी भी इंसान की असली पहचान उसके अच्छे समय से नहीं बल्कि कठिन समय से होती है। मंडेला के जीवन का सबसे कठिन दौर तब शुरू हुआ जब उन्हें 1964 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उन्हें दक्षिणी अफ्रीका की रोबेन द्वीप जेल में रखा गया था। यह जेल बहुत कठोर मानी जाती थी। उन्हें एक छोटी सी कोठरी में रहना पड़ता था, कठोर मेहनत करनी पड़ती थी और सीमित भोजन मिलता था, और परिवार से मिलने तो बहुत ही कम अनुमति मिलती थी।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन इस कठिन परिस्थिति ने उनके विचारों को जागृति जी कमजोर नहीं किया। उन्होंने जेल में भी पढ़ना लिखना जारी रखा। वे अपने साथियों का उत्साह बढ़ाते थे और उन्हें निराश नहीं होने देते थे। उन्होंने एक बार कहा था कि साहस का अर्थ डर का न होना नहीं बल्कि डर पर विजय प्राप्त करना होता है।
1: बिल्कुल।
0: और यही कारण था कि जेल की दीवारें उनके शरीर को कैद कर सकी लेकिन उनके विचारों और उनके सपनों को नहीं।
1: बिल्कुल अंजलि, मंडेला जी ने लगभग 27 वर्ष जेल में बिताए और ये किसी भी व्यक्ति के जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी थी।
0: बिल्कुल।
1: दुनिया भर में लोग उनकी रिहाई की मांग करने लगे थे। कई देश, संगठन और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने दक्षिण अफ्रीका सरकार पर दबाव भी बनाया था। आखिरकार श्रोता साथियों, 11 फरवरी 1990 को नेल्सन मंडेला जी को रिहा कर दिया गया। उनकी रिहाई केवल एक व्यक्ति की रिहाई नहीं थी बल्कि ये न्याय और समानता की जीत का प्रतीक थी।
0: बिल्कुल।
1: जेल से बाहर आने के बाद दुनिया ये सोच रही थी अंजलि कि मंडेला जी अपने विरोधियों से बदला लेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया था। उन्होंने कहा कि यदि वे नफरत को अपने साथ लेकर जेल से बाहर आएंगे तो वो वास्तव में आजाद नहीं होंगे।
0: बिल्कुल।
1: उन्होंने बदले की जगह क्षमा को चुना। उन्होंने सभी समुदायों को साथ लेकर चलने की बात कही। ये उनके महान व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता थी। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि नफरत से केवल विनाश होता है जबकि प्रेम और क्षमा समाज को जोड़ती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, वर्ष 1994 में दक्षिणी अफ्रीका में लोकतांत्रिक चुनाव हुए और मंडेला देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने।
1: बिल्कुल।
0: यह केवल उनकी व्यक्तिगत सफलता नहीं थी बल्कि उन लाखों लोगों की जीत थी जिन्होंने वर्षों तक समानता और न्याय के लिए संघर्ष किया था। राष्ट्रपति बनने के बाद भी उन्होंने सत्ता को सेवा का माध्यम नहीं माना। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी के उत्थान और राष्ट्रीय एकता का विशेष ध्यान रखा। उन्होंने कभी भी यह नहीं कहा कि केवल एक वर्ग आगे बढ़े बल्कि उनका सपना था कि हर नागरिक को समान अवसर मिले। महान नेता वह नहीं होता है दोस्तों जो सबसे आगे चलता है बल्कि वह होता है जो सबको साथ लेकर चलता है।
1: बिल्कुल अंजलि, आपने सही कहा। और जैसा कि हम नेल्सन मंडेला जी के बारे में बात कर रहे हैं तो श्रोता साथियों, नेल्सन मंडेला केवल दक्षिण अफ्रीका के नेता नहीं थे, वे पूरी दुनिया के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बन गए थे।
0: बिल्कुल।
1: उन्होंने गरीबी, भेदभाव, हिंसा और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने बच्चों की शिक्षा, महिलाओं के अधिकार और मानव गरिमा के लिए लगातार काम भी किए। उनका मानना था कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसके माध्यम से दुनिया को बदला जा सकता है।
0: जी जी।
1: उन्होंने युवाओं को हमेशा सकारात्मक सोच और सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के लिए भी प्रेरित किया। साथ ही अगर उनके पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो नेल्सन मंडेला को उनके योगदान के लिए बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त हुए। 1993 में उन्हें दक्षिण अफ्रीका के तत्कालीन राष्ट्रपति FW de Klerk को संयुक्त रूप से नोबेल पीस प्राइज प्रदान किया गया। इसके अलावा उन्हें दुनिया की कई देशों और संस्थानों द्वारा सम्मानित किया गया। वे शांति, लोकतंत्र और मानवाधिकारों के वैश्विक प्रतीक बन गए।
0: बिल्कुल जागृति जी, आज दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है लेकिन भेदभाव, हिंसा, असहिष्णुता और सामाजिक असमानताएं जैसी जो चुनौतियां हैं वो अभी भी मौजूद हैं। ऐसे समय में मंडेला का जीवन हमें याद दिलाता है कि समाज तभी मजबूत बनता है जब हर व्यक्ति को समान अवसर मिलते हैं।
1: बिल्कुल।
0: यदि हम अपने परिवार, विद्यालय, कार्यस्थल और समाज में एक दूसरे का सम्मान करें, भेदभाव न करें और सहयोग की भावना रखें तो यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
1: बिल्कुल अंजलि, 5 दिसंबर 2013 को नेल्सन मंडेला जी का निधन हो गया। उनके निधन से पूरी दुनिया शोक में डूब गई लेकिन महान लोग केवल अपने शरीर से विदा होते हैं, उनके विचार सदैव जीवित रहते हैं। श्रोताओं,
0: बिल्कुल,
1: आज भी मंडेला जी के आदर्श करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। आज के युवाओं को नेल्सन मंडेला जी के जीवन से कई महत्वपूर्ण सीख मिलती है। पहली सीख ये है कि अन्याय के सामने कभी चुप नहीं रहना चाहिए। दूसरी सीख ये कि संघर्ष कितना भी कठिन क्यों न हो, धैर्य और साहस हमें हमेशा बनाए रखनी है। तीसरी सीख ये है श्रोता साथियों की सफलता मिलने पर भी हमें विनम्र बने रहना है। चौथी सीख ये है कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा और जागरूकता सबसे बड़ी प्रभावी साधन है। और सबसे बड़ी सीख ये है कि क्षमा और मानवता किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं।
0: बिल्कुल जागृति जी, आज आवश्यकता इस बात की है कि हम उनके विचारों को अपने जीवन में उतारें। यदि हम किसी के साथ भेदभाव न करें, शिक्षा का सम्मान करें, दूसरों के अधिकारों की रक्षा करें और समाज में प्रेम, सहयोग और भाईचारे का वातावरण बनाकर रखें, तो हम भी एक बेहतर समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। तो श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कार्यक्रम के अंत में कि महान लोग हमें रास्ता दिखा कर चलते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना हमारी ही जिम्मेदारी होती है।
1: बिल्कुल। तो जैसा कि अंजलि, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी बातें हो चुकी हैं और समय का मान रखते हुए विदा लेना होगा। विदा जरूर लेंगे, पर जाते जाते सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। बस यही कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि संघर्ष से जो न घबराए वही इतिहास बनाते हैं, मानवता का दीप जलाकर दुनिया को राह दिखाते हैं। इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ आपके साथ विदा लेते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि आज की जो भी बातें रही कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा में नेल्सन मंडेला जी के जीवन परिचय से आपको अवगत करवाया, वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को
1: नमस्कार।

0: थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। अगर चाहो तेज दिमाग ने स्वस्थ जीवन, तो आयरन थकी भरपूर तत्व नु करो भोजन।
0: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके।
1: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवो, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
0: होवे भाईन बोनु, आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े मई देखाए तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
1: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
0: होवे एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दाल, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
1: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
0: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: तकी निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। मानी दुआ, पितानी उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट। स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम कथा कहानी में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आज वार रविवार का दिन है और आज ही के दिन में प्रेरणादायी शिक्षा प्रद कहानी को लेकर हाजिर होती हूँ। आज की कहानियाँ सुनाने का मकसद यही है कि आप इन कहानियों को सुनकर अपने जीवन में कुछ बदलाव लाए, क्योंकि हमेशा कहा गया है ना कि कोई प्रेरणादायी बातें या कोई कहानी ही हमें हमारे जीवन को बदलने के लिए प्रेरित करती है। तो साथियों, आज भी एक कहानी को लेकर हाजिर हूँ, लेकिन शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम कथा कहानी में आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम कथा कहानी में। और जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको कहा था कि आज वार रविवार का दिन है और आज ही के दिन में प्रेरणादायी शिक्षाप्रद कहानी को लेकर हाजिर होती हूँ। तो दोस्तों, आज जो कहानी सुनाने वाली हूँ उस कहानी का शीर्षक है एक बीज का सपना। जी हाँ दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि ये कहानी का शीर्षक ऐसा कैसा है, लेकिन दोस्तों ये कहानी बहुत अच्छी है। जब आप सुनेंगे तब आपको बहुत अच्छी लगेगी। जैसे कि कहानी शुरू होती इस तरह से कि गांव के बाहर एक विशाल मैदान था। वर्षों पहले वहाँ घना जंगल हुआ करता था। पेड़ों की छाया में पक्षी चहचहाते थे, जानवर स्वतंत्र होकर घूमते थे और आसपास के गांवों में हरियाली की एक ठंडी हवा बहती थी। लेकिन समय के साथ पेड़ कटते गए और जंगल धीरे धीरे मैदान में बदल गए। अब वहाँ धूल उड़ती थी, गर्मियों में धरती तपती थी और बरसात का पानी भी अधिक देर तक नहीं रुकता था। उसी मैदान की सूखी मिट्टी में एक छोटा सा बीज पड़ा था दोस्तों। बहुत छोटा था, इतना छोटा कि किसी का ध्यान भी उस पर नहीं जाता था। लेकिन उसके मन में एक बड़ा सपना था। बीज सोचता था, एक दिन मैं भी एक विशाल वृक्ष बनूंगा। मेरी शाखाओं पर पक्षी घोंसले बनाएंगे, मेरी छाया में लोग विश्राम करेंगे और मेरे फल किसी की भूख मिटाएंगे। लेकिन जब वो अपने आसपास देखता तो उसे केवल सूखी धरती और तपती धूप दिखाई देती। कई बार दोस्तों उसे लगता कि उसका सपना शायद कभी पूरा नहीं होगा। एक दिन तेज हवा चली। हवा ने हंसते हुए कहा, अरे छोटे बीज, तुम इतने बड़े सपने क्यों देखते हो? देखो तुम्हारे आसपास कितने बीज पड़े हैं जो कभी अंकुरित ही नहीं हो पाए। श्रोताओं, बीज मुस्कुराया और बोला, सपने देखने में क्या बुराई है? अगर मैं कोशिश ही ना करूं तो कैसे जानूंगा कि मैं क्या बन सकता हूं? हवा आगे बढ़ गई, लेकिन बीज के शब्द उसके भीतर गूंजते रहे। साथियों, दिन बीतते गए, गर्मी बढ़ती गई, सूरज की किरणें धरती को झुलसा रही थी। कई बार बीज को लगा कि वो हार जाएगा, लेकिन उसने अपने सपनों को नहीं छोड़ा। एक शाम अचानक बादल घिराए, बिजली चमकी और तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश की बूंदें धरती में समाने लगी। बीज को पहली बार जीवन का एहसास हुआ। उसने मिट्टी के भीतर अपनी छोटी सी जड़ निकालने की कोशिश की, और ये भी आसान नहीं था। मिट्टी जो थी वो कठोर थी श्रोता साथियों। रास्ते में पत्थर थे, कई बार उसकी जड़ें रुक जाती थी, लेकिन हर बार वो फिर प्रयास करता। धीरे धीरे उसकी जड़ें गहरी होती गई और एक दिन मिट्टी को चीरकर उसका छोटा सा अंकुर बाहर निकल आया। जब उसने पहली बार दुनिया देखी तो उसे बहुत खुशी हुई, लेकिन संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ था। एक बकरी वहाँ आई और कई छोटे पौधों को खा गई। अंकुर डर गया, उसे लगा कि अब उसका जीवन भी समाप्त हो जाएगा, लेकिन सौभाग्य से वो बच गया। कुछ दिनों बाद कुछ बच्चे वहाँ खेलने आए। दौड़ते दौड़ते एक बच्चा उस पर पैर रखने ही वाला था कि दूसरे बच्चे ने उसे रोक लिया। कहा, सावधान, यहाँ एक छोटा पौधा उग रहा है, इसे मत कुचलो। उस दिन पौधे ने महसूस किया कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो दूसरों के सपनों की रक्षा करते हैं। साथियों, समय बीतता गया, पौधा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अब वो एक छोटा पेड़ का रूप ले चुका था, लेकिन नई चुनौतियाँ उसका इंतजार कर रही थी। कभी सूखा पड़ता, कभी आंधी आती, कई बार उसकी शाखाएं टूट जाती, कई बार उसे लगता कि आगे नहीं बढ़ पाएगा। एक दिन उसने पास खड़े एक पुराने वृक्ष से पूछा, दादाजी, क्या आपके जीवन में भी इतनी कठिनाई आई थी? पुराना वृक्ष मुस्कुराया, बोला, बेटा, हर बड़े वृक्ष की कहानी संघर्ष से ही शुरू होती है। जो आंधियों से डर जाते हैं वे कभी ऊंचाई छू ही नहीं पाते हैं। लेकिन जब मुश्किलें बहुत बड़ी लगती है तब क्या करना चाहिए? पौधे ने वृक्ष से पूछा। तब वृक्ष बोला, दोस्तों, अपनी जड़ों को मजबूत बनाओ। जिसकी जड़ें मजबूत होती है उसे कोई तूफान गिरा नहीं सकता। ये बात दोस्तों पौधे के मन में बैठ गई। उसने अपनी जड़ों को इतना गहरा करना शुरू कर दिया कि धीरे धीरे वो मजबूत होता गया। साल गुजरते गए, अब वो एक विशाल वृक्ष बन चुका था। उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थी। उसकी छाया में राहगीर आराम कर रहे थे, पक्षी घोंसले बनाते थे, बच्चे खेलते थे। एक दिन वही हवा फिर वहाँ आई जिसने कभी उसका मजाक उड़ाया था। हवा ने आश्चर्य से कहा, क्या तुम वही छोटा बीज हो? वृक्ष मुस्कुराया, हाँ, मैं वही छोटा बीज हूँ जिसने सपना देखना नहीं छोड़ा था। हवा ने कहा, मैंने सोचा था कि तुम कभी सफल ही नहीं हो पाओगे। वृक्ष बोला, सफलता उन लोगों को मिलती है जो परिस्थितियों से नहीं अपने संकल्प से जीवन जीते हैं। कुछ वर्षों बाद उस वृक्ष के फलों से नए बीज जमीन पर गिरे। उनसे एक छोटे बीज ने पूछा, दादाजी, क्या मैं भी आपके जैसा बन सकता हूँ? वृक्ष ने कहा, क्यों नहीं, लेकिन याद रखना,
बड़ा बनने का सपना देखने से पहले संघर्ष सहने का साहस भी रखना होगा। बीच ने कहा, अगर रास्ते में कठिनाई आई तो क्या करूँगा? तब वृक्ष बोला, कठिनाइयां ही तुम्हें मजबूत बनाएगी। यदि तुम हर चुनौतियों का सामना करते रहोगे तो एक दिन तुम भी लोगों को छाया दोगे, आशा दोगे और जीवन दोगे। ये सुनकर सभी बीजों के मन में नया उत्साह भर गया। दोस्तों, श्रोता साथ, यह कहानी हमें संदेश देती है, ये कहानी केवल एक बीज की नहीं है, ये हर उस युवा की कहानी है जिसके मन में कोई सपना होता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई शिक्षक बनना चाहता है, कोई वैज्ञानिक तो कोई खिलाड़ी, कोई उद्यमी और कोई समाजसेवी। शुरुआत में हर सपना हमें छोटा ही दिखाई देता है, ठीक उसी बीज की तरह जैसे लोग उसका मजाक उड़ाते थे। पर श्रोताओं, लोग मजाक भी उड़ाते हैं, परिस्थितियां हमें कठिन भी लगती हैं, संसाधन भी कम होते हैं और रास्ते में असफलताएं भी हमें मिलती हैं। लेकिन जो युवा अपने लक्ष्य पर विश्वास रखता है, निरंतर मेहनत करता है और हार नहीं मानता, वही एक दिन विशाल वृक्ष की तरह सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। इसलिए याद रखिए श्रोता साथियों कि हर विशाल वृक्ष कभी एक छोटा बीज था और हर बड़ी सफलता कभी एक छोटा सपना थी। तो आपसे इस कहानी के माध्यम से कहना चाहेंगे साथियों कि सपनों को पंख दो, मेहनत को आधार दो, बीज से वृक्ष बनेगा और यही है सफलता का द्वार। तो दोस्तों, ये थी कहानी। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको और भी बातें कुछ कहना चाहूंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।

दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम कथा कहानी में। और जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई थी और कहानी का शीर्षक था एक बीच का सपना। साथ ही प्रकृति हमें जीवन के बहुत सारे महत्वपूर्ण संदेश देती है। एक छोटा सा बीज भी हमें धैर्य, संघर्ष और सफलता का पाठ पढ़ाता है। देखने में साधारण लगने वाला बीज अपने भीतर एक विशाल वृक्ष बनने की क्षमता रखता है। और यही कारण है श्रोता साथियों कि एक बीज का सपना केवल प्रकृति की कहानी नहीं है, बल्कि हम मानव जीवन और विशेष रूप से हम युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जब एक बीज मिट्टी में बोया जाता है तब उसे अंधेरे में रहना पड़ता है। वो धूप, बारिश, हवा और बहुत सारी कठिन परिस्थितियों का सामना करता है। कई बार उसे मिट्टी को चीरकर बाहर निकलने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन दोस्तों, वो हार नहीं मानता। धीरे धीरे वो अंकुरित होता है, पौधा बनता है और समय के साथ एक विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। ये परिवर्तन हमें बताता है कि सफलता प्राप्त करने के लिए धैर्य और निरंतर प्रयास बहुत जरूरी है। आज हम देखते हैं कि युवाओं के जीवन में बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। शिक्षा, रोजगार, प्रतियोगिता, सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। कई बार असफलता भी मिलती है, लेकिन श्रोता साथियों, हम आपसे इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगे कि असफलता अंत नहीं होती। जिस प्रकार बीज कठिनाइयों से लड़कर वृक्ष बनता है, उसी प्रकार युवा भी अपने आत्मविश्वास और परिश्रम के बल पर सफलता प्राप्त कर सकता है। एक वृक्ष बनने के बाद वही बीज समाज के लिए उपयोगी बन जाता है। वो छाया देता है, फल देता है, पक्षियों को आश्रय देता है और पर्यावरण को संतुलित रखने में सहायता करता है। इसी प्रकार दोस्तों, आपसे कहना चाहेंगे कि हम युवा जब अपने जीवन में सफल होते हैं तो हम केवल स्वयं का ही नहीं बल्कि परिवार, समाज और राष्ट्र का भी विकास कर सकते हैं। आज आवश्यकता इस बात की श्रोता साथियों कि युवा अपने भीतर छिपी क्षमताओं को पहचाने और अपने सपनों को साकार करने का संकल्प लें। हमें कठिनाइयों से घबराने के बजाय उनसे सीखना होगा। दृढ़ इच्छा शक्ति, सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। कहा गया है श्रोताओं कि छोटा बीज बड़ा विचार, मेहनत से मिलता है सम्मान अपार। इसीलिए दोस्तों, एक बीज का सपना हमें सिखाता है कि कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। यदि हमारे भीतर आत्मविश्वास है, धैर्य है, मेहनत की भावना है तो हम जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए युवाओं को उस बीज की तरह अपने सपनों को संजोकर रखना होगा और उन्हें साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना होगा। यही सफलता और प्रगति का सच्चा मार्ग है। और दोस्तों, अंत में आपसे यही कहना चाहूंगी इस कहानी के माध्यम से, यदि आपके पास केवल एक छोटा सा सपना है तो निराश मत होइए। उस बीज की तरह धैर्य रखिए, संघर्ष की मिट्टी में मेहनत की जड़ें जमाइए और आत्मविश्वास की धूप में आगे बढ़ते रहिए। समय जरूर लगेगा, चुनौतियाँ भी आएंगी, लेकिन यदि हमारा संकल्प मजबूत है दोस्तों, तो एक दिन हम भी सफलता के इस विशाल वृक्ष में बदलेंगे, जिसकी छाया में न केवल हमारा जीवन बल्कि समाज का भविष्य भी सुरक्षित और समृद्ध होगा। इसलिए आपसे कहना चाहेंगे कि सपने देखिए, संघर्ष कीजिए और अपने जीवन को एक प्रेरणा बना दीजिए। इन उम्मीदों के साथ आज के इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहूंगी और उम्मीद करती हूँ कि आज जो भी कहानी सुनाई और जो भी बातें रही इस कार्यक्रम के माध्यम से, वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम कथा कहानी, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर

हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नई प्रेरणादायी शिक्षाप्रद कहानी के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपने साथी जागृति भट्ट को कार्यक्रम कथा कहानी से जाने की अनुमति। नमस्कार। साथ ही आप सभी को छोड़े चलती हूँ इस गीत के साथ में।

बच्चों, मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी दीदी मनीषा दीदी। आ गई हूँ बच्चों मैं बात नन्हे दिलों की को लेकर नई नई कहानियों के साथ में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में मैं जब भी हाजिर होती हूँ तो कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको प्रेरणादायक कहानियाँ सुनाती हूँ आपको, जो आपके जीवन में आपको नई नई सीख देते हैं। तो बच्चों आज भी कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही प्यारी कहानियों को लेकर मैं हाजिर हुई हूँ, तो ये कहानियाँ तो मैं आपको अवश्य सुनाऊंगी, लेकिन कार्यक्रम के दस्तूर को निभाते हुए सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में।

बच्चों, इस प्यारे से गीत के बाद में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ बात नन्हे दिलों की में। जैसा कि बच्चों मैंने गीत से पहले कहा था कि मैं बहुत ही प्यारी कहानियों को लेकर हाजिर हुई हूँ। आज हमारी पहली कहानी है छोटा बीज बड़ा सपना। जी हाँ बच्चों, एक छोटे से गांव में जहाँ चारों ओर हरियाली थी वह एक विशाल खेत था। उस खेत में कई तरह के पेड़ पौधे उगते थे। उसी खेत में एक दिन एक किसान ने कुछ बीजों को बोए। उन बीजों में एक छोटा सा बीज था। बच्चों वह बीज बहुत छोटा था, इतना छोटा कि बाकी बीज देखकर उसे हंसते थे। एक दिन बड़े बीज ने कहा, तुम इतने छोटे हो, तुमसे क्या होगा। छोटा बीज थोड़ा उदास हुआ, लेकिन उसने धीरे से कहा, मैं छोटा जरूर हूँ लेकिन मेरा सपना बड़ा है। बाकी बीज फिर हंसने लगे। बच्चों कुछ दिनों बाद बारिश हुई, मिट्टी गीली हो गई, सभी बीज अंकुरित होने लगे। लेकिन छोटे बीज के सामने कई मुश्किलें थी। मिट्टी बहुत सख्त थी, ऊपर पत्थर था, सूरज की रोशनी कम मिल रही थी। उसने सोचा, शायद मैं कभी बाहर नहीं आ पाऊंगा। फिर उसे अपनी बात याद आ गई, मेरा सपना तो बड़ा है। फिर उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। बच्चों दिन बीतते गए, बाकी पौधे जल्दी जल्दी ऊपर आ गए, वे सूरज की रोशनी में नहा रहे थे। छोटा बीज अभी भी मिट्टी के अंदर ही था। एक दिन उसने पूरी ताकत लगाई, धीरे धीरे और आखिरकार वह मिट्टी को चीर कर बाहर आ गया। वह बहुत छोटा पौधा था। दूसरे पौधे बोले, इतनी देर से आए हो, तुम कभी बड़े नहीं बन पाओगे। छोटे पौधे ने मुस्कुराकर कहा, देखते हैं। अब रोज एक नया संघर्ष शुरू हुआ। बच्चों तेज धूप, ठंडी हवा, कभी बारिश ज्यादा कभी कम, लेकिन वह पौधा रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहा। वह खुद से कहता, आज थोड़ा और मजबूत बनूंगा। धीरे धीरे उसकी जड़ें गहरी होने लगी। एक दिन एक छोटी चिड़िया आई। उसने उस पौधे को देखा। चिड़िया बोली, तुम अभी छोटे हो लेकिन तुम में कुछ खास है। पौधा खुश हो गया। चिड़िया रोज उसके पास आने लगी। वह उसे हौसला देती, जब तेज हवा चली तो झुक जाना, टूटना नहीं, जब धूप तेज हो तो सहना, हारना नहीं। पौधे ने ये सब बातें याद रखी। कुछ महीनों बाद जो पौधे पहले हंसते थे उनमें से कई सूखने लगे, क्योंकि उनकी जड़ें गहरी नहीं थी। लेकिन छोटा पौधा अब मजबूत हो चुका था। उसकी जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक चली गई थी। एक दिन उस पौधे पर एक छोटा सा फूल खिला। वह बहुत सुंदर था। चिड़िया बोली, देखो तुम्हारी मेहनत रंग लाई। पौधा खुश हो गया। अब लोग भी उसे देखने लगे। साल बीतते गए। वो छोटा पौधा अब एक बड़ा पेड़ बन चुका था। उसकी शाखाएं फैल गई थी। उसकी छाया में लोग बैठते थे, पक्षी उसमें घर बनाते थे। एक दिन वही पुराने पौधे जो अब छोटे पेड़ थे बोले, हमने तुम्हें कम समझा। पेड़ मुस्कुराया और बोला, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, मेहनत और हिम्मत ही इंसान को बड़ा बनाती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें कई बातें सीखने को मिलती हैं, जैसे कि कभी हमें खुद को छोटा नहीं समझना चाहिए। आप चाहे कितने भी छोटे क्यों न हो, आपके सपने बड़े हो सकते हैं। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता बच्चों, जो मेहनत करता है वही आगे बढ़ता है। बच्चों धैर्य भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। जल्दी हार मानने से कुछ नहीं मिलता, इसीलिए बच्चों हमें हमेशा धैर्य बनाकर रखना चाहिए। साथ ही बच्चों, जो मुश्किलें हमारे सामने आती है वो हमें मजबूत बनाती है, इसलिए हमें हर समस्याओं का सामना करना चाहिए, क्योंकि हर समस्या हमें कुछ सिखाती है। इसी के साथ बच्चों, हमें अच्छे दोस्त बनाने चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में अच्छे दोस्त बहुत जरूरी होते हैं। जैसे कि चिड़िया ने पौधे को हिम्मत दी, ऐसे ही हमारे जीवन में भी जो हमारे दोस्त होते हैं जो हमें हिम्मत देते हैं, तो हमें हमारे जीवन में अच्छे दोस्त बनाने चाहिए। तो बच्चों, अब वह पेड़ हर साल नए बीज देता था। एक दिन एक छोटा बीज उससे बोला, मैं भी बड़ा बनना चाहता हूँ लेकिन मैं छोटा हूँ। पेड़ मुस्कुराया और बोला, मैं भी कभी तुम्हारी तरह था। और फिर उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। छोटा बीज अब डर नहीं रहा था, उसने भी सपना देखा, मैं भी एक दिन बड़ा बनूंगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सपने बड़े रखो, मेहनत करते रहो और कभी हार मत मानो। छोटा होना हमारी कमजोरी नहीं है, यह तो हमारी शुरुआत होती है। जो खुद पर विश्वास रखता है बच्चों, वही सफल होता है। आशा करती हूँ कि बच्चों ये कहानी आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। आगे भी मैं आपको एक और प्यारी सी कहानी सुनाऊंगी, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारी सी गीत के साथ में।

0: बच्चों इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की ओर। जैसा कि बच्चों मैंने गीत से पहले आपको एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनाई थी, अब यही हम एक और प्यारी सी कहानी सुनने जा रहे हैं जिसका नाम है गिलहरी की हिम्मत। जी हाँ बच्चों, एक हरे भरे जंगल में एक चंचल नाम की एक छोटी सी गिलहरी रहती थी। वह बहुत ही फुर्तीली थी लेकिन दिल से थोड़ी डरपोक थी। उसे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ना बहुत अच्छा लगता था, पर जब भी कोई नया काम उसके सामने आता तब वह घबरा जाती। एक दिन बच्चों जंगल में तेज आंधी आई, कई पेड़ की टहनियां टूट गई और पक्षियों के घोंसले नीचे गिर गए। छोटे छोटे पक्षी डर कर इधर उधर छिप गए। पूरा जंगल परेशान था। चंचल ने ये सब देखा तो उसका मन दुखी हो गया। वह सोचने लगी, मैं तो एक छोटी सी गिलहरी हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। तभी उसकी दादी गिलहरी ने कहा, बेटी छोटा होना कमजोरी नहीं है, अगर दिल बड़ा हो तो काम भी बड़े हो जाते हैं। चंचल ने हिम्मत की, उसने पेड़ों से सूखी टहनियाँ इकट्ठी करनी शुरू की। वो एक एक करके टहनियाँ लाती और पक्षियों के पास रखती। धीरे धीरे और भी जानवर उसकी मदद करने लगे। बंदर ऊपर चढ़कर घोंसले ठीक करने लगे। हाथी ने गिरे पेड़ों को रास्ते से हटाया और हिरण बच्चों को सुरक्षित जगह ले गया। कुछ ही दिनों बाद जंगल फिर से पहले जैसा सुंदर हो गया। पक्षियों ने चंचल को धन्यवाद दिया। एक छोटे से पक्षी ने कहा, अगर तुम हिम्मत न करती तो हम सब उदास रहते। चंचल को समझ आ गया कि डरना बुरा नहीं है लेकिन डर के कारण रुक जाना गलत है। उस दिन के बाद उसने हर नए काम को आत्मविश्वास के साथ करना शुरू कर दिया। शाम को जब ठंडी हवा चल रही थी तो दादी ने मुस्कुरा कर कहा, देखा असली ताकत शरीर से नहीं मन में होती है। चंचल खुशी से अपनी पूंछ हिलाने लगी। अब वह सिर्फ फुर्तीली ही नहीं बहादुर भी बन चुकी थी। तो बच्चों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हिम्मत करने वाले छोटे भी बड़ा काम कर सकते हैं। एक ही पल में सब मिलकर काम करने लगते हैं तो डर को भी हरा कर आत्मविश्वास आता है। आशा करती हूँ कि बच्चों आपको ये प्यारी सी कहानियाँ जरूर पसंद आई होंगी। अब समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा तो जरूर लूंगी लेकिन जाने से पहले करते ही मनोरंजन एक और प्यारे सी गीत के साथ में। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में फागट रेडियो 90.8 FM पर।
1: लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े के दुम पे जुमा रहा तोड़ा।

बच्चों, इस प्यारे से गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम बातें नन्हे दिलों की से हम विदा लेते हैं। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो बच्चों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपने साथी मनीषा पटेल को कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ में बाय बाय।

साथियों, खुद की काबिलियत पर भरोसा रखो। जो गलती आज की है उससे कुछ सीखो। मत मांगो किसी के आगे अपनी सफलता के लिए भीख। हम खुद जला हुआ रेगिस्तान है, अपने अंदर कुछ करने की हमें ठाननी है। हमें रुकना नहीं है, कुछ महान करना है। हम अपने घर वालों की आस है, उनकी उम्मीदों की सांस है। इसको यूं ही नहीं जाया करना है, हमें अपनी सफलता के लिए आगे आना है।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम हमारे मेहमान में। मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर। स्वीकार करिएगा मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम हमारे मेहमान में हम हर रविवार को कार्यक्रम के माध्यम से एक नए शख्सियत को जोड़ते हैं, उनकी कुछ जीवन के अनुभवों को जानते हैं कि किस तरीके से जीवन में मुश्किलें आती और जाती रहती हैं, लेकिन अगर हम मन की इच्छा शक्ति से किसी कार्य को करते हैं तो वो अवश्य ही पूरा होता है। तो श्रोता साथियों, आज भी हमारे कार्यक्रम में हमारे विशेष अतिथि जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं उनकी जीवन की जुड़ी हुई कुछ बातों को। मैम नमस्कार।
1: नमस्ते
0: मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं वागड़ रेडियो परिवार में।
1: शुक्रिया।
0: जैसा कि मैम आप हमारे कार्यक्रम हमारे मेहमान से जुड़ रहे हैं और हमारे सभी श्रोता साथी जानते हैं कि कार्यक्रम हमारे मेहमान में हम हर रविवार को कार्यक्रम के माध्यम से एक शख्सियत जोड़ते हैं, तो मैम आज भी आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपका परिचय जानना चाहूंगी।
1: मेरा नाम विशाला है, मैं बैंगलोर से आई हूँ और एक NGO है PGS ऑर्गेनिक काउंसिल करके, जिसकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ मैं।
0: जी बिल्कुल। तो मैम जैसा कि आपने आपका परिचय हमें बताया, तो सबसे पहले तो मैं कार्यक्रम के माध्यम से आपके बचपन के बारे में जानना चाहूंगी कि आपका बचपन कैसे बीता, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सबका बचपन अलग अलग होता है। किसी के बचपन में कुछ अभाव होते हैं तो किसी के बचपन में पर्याप्त सुविधाएं होती हैं, तो ऐसे में अगर हमारे जीवन में कुछ भी कमी रह जाती है बचपन के समय में, तो किस तरीके से हम उससे निकल कर आगे चल कर अपने जीवन को बदल सकते हैं, तो सबसे पहले मैं आपके बचपन के बारे में जानूंगी।
1: मैं पैदा हुई थी बैंगलोर में ही, क्योंकि मेरी मम्मी बैंगलोर से थी तो मैं पैदा वहीं पे हुई थी और मेरा बचपन भी ज्यादातर बैंगलोर में ही था। जब तक मैं 12th स्टैंडर्ड तक थी, तो बैंगलोर में जो कैंटोनमेंट की एरिया है वहाँ हुई थी मेरी स्कूलिंग और जो भी मैंने सीखा था प्राइमरी एजुकेशन। और मेरे फैमिली, मेरे एक्सटेंडेड फैमिली, तो हमारा तो बहुत बड़ा परिवार था, बहुत सारे चाचा चाची सब साथ में रहते थे। तो बचपन में तो वैसे अभी बोलूं तो बहुत अच्छा रहा हमारा बचपन, क्योंकि तब का बैंगलोर भी बहुत छोटा टाउन जैसा था, हर किसी को हम जानते थे और पास के स्कूल में जाते थे। इतना शानदार स्कूल नहीं है, बहुत बड़ा सा इंग्लिश मीडियम वो सब नहीं था, फिर भी जो बेसिक हमें एजुकेशन मिला, बहुत प्यार मिला टीचर से और बहुत एनकरेजमेंट मिला।
0: जी जी बिल्कुल।
1: और मुझे भी बहुत अपॉर्चुनिटीज मिले कि मेरे जो भी स्किल्स है, कुछ मुझे पेंटिंग करने में अच्छा लगता था और स्पोर्ट्स अच्छे लगते थे, तो मुझे भी वहाँ बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिले।
0: जी बिल्कुल मैम, जैसा कि आपने बताया कि आपका जो बचपन है वो बहुत अच्छे से बीता, जैसा कि आपने बताया कि आपकी जो पढ़ाई है वो बेंगलोर में ही रही थी, तो मैम अब मैं आपके शिक्षा के क्षेत्र के बारे में जानना चाहूंगी कि आपके जो शिक्षा का सफर था वो कैसा रहा।
1: तो मैंने स्कूल और कॉलेज के 12th के बाद, मेरा बहुत इंटरेस्ट था कंजर्वेशन में, वाइल्ड लाइफ में, तो इंटरेस्ट तो बहुत ज्यादा था तब, ये मैं कुछ 30 साल के पहले की बात कर रही हूँ। तो तब क्या था कि वाइल्ड लाइफ में बहुत अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं थे, फिर भी मैंने आगे जाके बॉटनी और जुआलॉजी में ग्रेजुएशन किया था, BSc किया था, इसी उम्मीद में कि कुछ वाइल्ड लाइफ में कर पाऊंगी और कंजर्वेशन में रहूंगी, क्योंकि हमारे जो सिटी के पास एक जंगल है बनरगट्टा नेशनल पार्क में, उस पर मुझे बहुत लगाव था, बहुत अच्छा लगता था वो जगह।
0: जी जी।
1: एक बार स्कूल से हम ट्रिप गए थे तो बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि वाइल्ड लाइफ और ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन में मुझे काम करना है।
0: जी जी।
1: तो मैंने BSc तो कर दिया, पर बाद में मुझे थोड़ा समझ में आया कि क्योंकि मेरे पे थोड़ा बहुत तो इकोनॉमिक प्रेशर भी था, मेरी तो डिग्री के बाद ही जल्दी शादी हो गई थी।
0: जी जी।
1: एंड एक फाइनेंशियल प्रेशर बहुत था, तो मुझे अच्छा खासा काम नहीं मिल रहा था।
0: जी बिल्कुल।
1: तो इसीलिए मुझे ग्रेजुएशन के बाद में मुझे थोड़ा बहुत जो मेरा ड्रीम था कि मैं फॉरेस्ट्री और वाइल्ड लाइफ पे काम करूं, थोड़ा उससे बियॉन्ड सोचना पड़ा। कुछ छोटे मोटे जॉब्स लिया था मैंने, कुछ स्मॉलर कंपनी से, और एक 2 साल के बाद मेरी एक मुलाकात हुई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से, उनके ऑफिस में काम कर रही थी मैं।
0: जी जी।
1: तब वो बहुत एनकरेज कर रहे थे, बोल रहे थे कि तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम CA कर सकती हो और CA करने से तुम पैसा कमा सकती हो।
0: जी बिल्कुल।
1: मुझे वैसे तो मुझे कॉमर्स में कुछ ऐसा खास इंटरेस्ट नहीं था, पर उनके ऑफिस में काम तो अच्छा लगता था, तो मैंने सोचा कि अच्छा एग्जाम ही लिखना है तो थोड़ा ट्राई भी कर लेती हूँ। मुझे खुद पे तो भरोसा नहीं था कि मैं कुछ, जो इंटरेस्ट मेरा साइंस था, तो मुझे कुछ खुद पे भरोसा नहीं था कि मैं CA कर पाऊंगी। और सब लोग बोल भी रहे थे कि CA बहुत मुश्किल कोर्स है, एग्जाम्स पास करना बहुत मुश्किल है, पर उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और घर में भी पेरेंट्स ने बहुत एनकरेज किया, बोल रहे थे कि करो ट्राई करो। तो मैंने एक 2 साल का ट्रायल पीरियड खुद को दिया और मैंने एग्जाम्स पास भी कर लिया
0: जी जी
1: एंड देन आई बिकेम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट
0: जी बिल्कुल। तो जैसा कि मैम आपने आपकी शिक्षा के सफर के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हमारे श्रोता साथियों को दी है, लेकिन जैसा कि मैम आपने बीच में कहा कि आपकी ग्रेजुएशन के बाद ही शादी हो गई थी, तो मैं जानना चाहूंगी कि शादी के बाद जो करियर की चीजें हैं उन्हें सफल बनाना हमारे लिए किस तरीके से मुमकिन हो सकता है, क्योंकि बहुत सी महिलाएं जो हैं वो शादी के बाद ये सोचती हैं कि हमें घर का काम, परिवार, बच्चे, इन सबको संभालने के चक्कर में खुद का जो करियर है वो बंद कर देती हैं। तो ऐसे में उन बहनों को आप क्या कहना चाहेंगी?
1: मेरे ख्याल से अगर आपकी, क्योंकि शादी तो हमारे यहाँ इंडिया में अभी परिवार परिवार के साथ होती है
0: जी बिल्कुल,
1: तो सपोर्ट सिस्टम ज्यादा चाहिए थोड़ा, ये सिर्फ 2 लोगों के बीच की बात नहीं है। तो मुझे तो सपोर्ट सिस्टम मिला, फॉर्चुनेटली मुझे बहुत सपोर्ट सिस्टम मिला तो मैं कर पाई। तो
0: जी जी
1: अभी भी मैं बोलूंगी कि इंडिविजुअल एफर्ट्स एक तरफ है, हाँ खुद को, लेडीज को भी, विमेन को भी बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए और एक तो गोल या विल पावर तो होना चाहिए
0: जी
1: कि
0: जी
1: कुछ करना है मुझे और मुझे इंडिपेंडेंट रहना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना है और मुझे कुछ पर्पस है जिसके तरफ मैं काम करना चाहती
0: हूँ। जी बिल्कुल,
1: उस विल को अगर फैमिली से भी सपोर्ट मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है। और जैसे मेरे केस में हुआ, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने मुझे एनकरेज किया
0: जी जी बिल्कुल।
1: तो मुझे लगता है कि दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है, खुद की जो विल पावर होती है और खुद की जो इच्छा होती है कि कुछ करना, प्लस वो जो इकोसिस्टम सपोर्ट, जो लोगों से रिलेशनशिप और सपोर्ट है, वो दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है।
0: जी बिल्कुल मैम, आपने सही कहा। तभी हम हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को अधिकतर यही कहा करते हैं कि जिन व्यक्तियों से हम प्रेरणा ले सकते हैं हमें लेते रहना चाहिए। हम देखते हैं कि हम बच्चों से, हमारे जो जीव जंतु होते हैं उनसे भी जीवन में प्रेरणा ले सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमारे जीवन में हमारे लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो जैसा कि मैम आपके माध्यम से हम ढेर सारी बातों को जान रहे हैं और जैसा कि मैम आपने बताया था कि आप एक एनजीओ भी चला रहे हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि एनजीओ के माध्यम से आप किस तरीके से आपका जो गोल था उसे पूरा कर पा रहे हैं?
1: तो पहले तो मेरा सीए करना पड़ा मुझे, कुछ इनकम, डिसेंट इनकम कमाने के लिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए। तो मैंने तो 5 साल कॉर्पोरेट में काम किया, बाद में कंसल्टेंसी किया मैंने कुछ साल के लिए
0: जी जी।
1: पर बाद में मुझे, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही था वाइल्ड लाइफ और इसमें कंजर्वेशन में, तो मुझे ये तो लगता था कि जब भी हो सके तो मैं वापस आऊंगी यहाँ काम करूंगी
0: जी जी।
1: तो वो तो मन में था ही। एंड 10 साल के बाद, 10 साल के जो प्रोफेशनल जर्नी के बाद मैंने डिसाइड किया कि जो मुझे, क्योंकि तब तक तो थोड़ा बहुत फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी हो गई
0: जी,
1: तो मुझे लगा कि मुझे अभी थोड़ा लोगों के साथ काम करना है, सोशल इम्पैक्ट करना है मुझे। और ये भी था कि 10 साल की जो एक्सपीरियंस और मेरे जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी मुझे इतना सारा एक्सपीरियंस दिया, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस दिया, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कि मैं एनजीओ सेक्टर में कुछ कर पाऊंगी
0: जी जी बिल्कुल,
1: एज अ डेवलपमेंट प्रोफेशनल। तो मैं ट्राई कर रही थी कि ज्यादातर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ पे करे और मुझे एग्रीकल्चर में भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था, तो मैंने उसमें थोड़े मुझे अपॉर्चुनिटीज मिले। तो मैं, हमारा जो अभी संस्था है पीजीएस ऑर्गेनिक काउंसिल, वो एक ऑल इंडिया कोएलिशन ऑफ एनजीओस है, उसमें
0: जी बिल्कुल
1: 35-40 एनजीओस मेंबर्स है उसमें, और हम एडवोकेसी और पॉलिसी रिलेटेड काम करते हैं और ग्रास रूट पे भी काम करते हैं
0: जी बिल्कुल।
1: तो इसमें मुझे अभी यहाँ मैं 20 साल से कर रही हूँ एनजीओ सेक्टर में, और पिछले 10 साल से तो फुल टाइम डेवलपमेंट प्रोफेशनल हूँ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। तो मुझे यहाँ से, मुझे लगता है कि आज मैं जिस सेक्टर में हूँ, पैसे अलग सी बात है, पर जितना मुझे पर्पस और फुलफिलमेंट हो रही है और
0: जी जी।
1: जितना मुझे लगता है कि मुझे जो मिला जीवन से, जैसे कि सपोर्ट फ्रॉम एजुकेशन, फैमिली से
0: जी जी,
1: उसको गिफ्ट मानती हूँ
0: जी बिल्कुल,
1: और उसको मैं शेयर कर पा रही हूँ बहुत सारे लोगों से, तो वो सेटिस्फेक्शन अभी मुझे मिल रहा है इस सेक्टर।
0: जी बिल्कुल मैम, आपने बहुत सही कहा, क्योंकि हम देखते हैं कि जीवन में घर परिवार का सपोर्ट रहे और उनके द्वारा अगर हम लाइफ में कुछ अच्छा कर पाए तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार ही होता है। तो मैम जैसा कि कार्यक्रम में बातें बहुत अच्छी चल रही है, हम आपके जीवन के अनुभवों को

0: रही थी
1: जी जी,
0: तो उसमें तो मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हुई क्योंकि जो मैं देख रही थी वहाँ की जो इश्यूज लोगों की, क्योंकि कुछ लोगों को हॉस्पिटल की बिल भरने के भी पैसे
1: नहीं थे जी बिल्कुल,
0: तो इतना प्रॉब्लम्स था, इतना डिफिकल्टीज दिखाई दे रहा था, तो मुझे बहुत दिन लगा, मुझे तो 5-6 महीने लगा उस सदमे से बाहर आने के लिए
1: जी बिल्कुल।
0: तो दैट आई वुड से वाज सबसे बड़ा ट्रॉमा तो मेरे लिए वही था
1: जी बिल्कुल। मैम आपने बहुत सही कहा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी की वजह से किस तरीके से लोगों की हालत खराब हुई, बहुत सारे लोगों को जहां वो जॉब करते थे वो छोड़कर आना पड़ा, बहुत सारी स्थिति गंभीर थी। तो जैसा कि मैम आपने बहुत अच्छी बातों से हमारे श्रोता साथियों को अवगत करवाया है, तो अंत में आप हमारे श्रोता साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: संदेश तो हाँ, हमारे ही जीवन एक्सपीरियंस से आती है, तो मुझे जितना भी मैं वही जैसे मैं बोल रही थी, जितना भी मुझे पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिला, सपोर्ट मिला, वो सबको मैं ब्लेसिंग यानी कि वो गिफ्ट मानती हूँ। तो उसमें हमें थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है, क्योंकि जैसे आप आज के जो सिस्टम में रहते हैं हम, जो लार्जर इकोसिस्टम है
1: जी जी,
0: उसमें हम देखते हैं कि गरीबी भी है और बहुत अमीरी भी है और उसकी डिवाइड भी बहुत ज्यादा होती जा रही थी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम सबकी एक रोल होती है उसमें, थोड़ा बहुत हम इक्वालिटी पे थोड़ा कॉन्शियस रहे, अवेयर रहे उसके बारे में, और जहां भी है, हम गांव में है या शहर में है, छोटे शहर में है, बहुत छोटे से गांव में है, अगर हम इतना समझे कि आई मीन एंड ऑफ द डे हम सब साथ में है
1: जी बिल्कुल,
0: जो भी आज के प्रॉब्लम बड़े बड़े इश्यूज है, चैलेंजेस है, क्लाइमेट चेंज हो या जैसे कोरोना जैसे पैंडेमिक हो
1: जी जी,
0: तो बात एक ही बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हम सब साथ में हो
1: जी बिल्कुल,
0: और उसको पार करना और भी आसान होगा
1: जी बिल्कुल मैम।
0: तो यही मुझे जो भी डाउनफॉल्स भी हुए मेरे लाइफ से, मुझे तो यही सीखना मिला कि आई मीन एंड ऑफ द डे ह्यूमैनिटी जो हम बोलते हैं उसको, दैट हैज टू सर्वाइव
1: जी बिल्कुल मैम, आपने सही कहा। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
0: थैंक यू, धन्यवाद।
1: साथियों जैसा कि अभी हमारे बीच में मुख्य अतिथि जुड़े हुए थे और उनके जीवन से हमने ढेर सारी बातों को जाना कि किस तरीके से शुरुआत में हम जो सपने देखते हैं वो पूरे होते हमें दिखाई नहीं देते हैं, तो हम किसी और राह पर चले जाते हैं, फिर उस राह से हम किस तरीके से वापस हमने जो सपना देखा था उसे कैसे पूरा कर सकते हैं, ये जो बात है वो हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। और साथ ही हम उनके माध्यम से ये भी जान पाए कि किस तरीके से एक महिला विवाह के पश्चात भी अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को बरकरार रख सकती है, अपने सपनों को पूरा कर सकती है। तो श्रोता साथियों आशा करते हैं कि आज जो हमारे बीच में अतिथि जुड़े हुए थे उनके जीवन से जुड़ी हुई जो बातें रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले करते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

साथियों, इस गीत के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम हमारे मेहमान से हम विदा लेते हैं और आशा करते हैं कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। इसी के साथ श्रोता साथियों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vaagdha.org, radio@vaagdha.org। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी अगले रविवार को कार्यक्रम हमारे मेहमान में एक नई शख्सियत के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपनी साथी अंजलि पाराशर को कार्यक्रम से जाने की। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: सेहत नु राज मुंह है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी तकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने तात काड़ी नी जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरो, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
2: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: भाई बोनो, घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। मानी दुआ, पिता ने उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटले गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: हाजिर है साथियों कार्यक्रम गांधी आत्म दर्शन में।
2: श्रोता साथियों, आदमी अक्सर वो बन जाता है जो वो होने में यकीन करता है। अगर मैं खुद से ये कहूँ कि मैं फला चीज नहीं कर सकता, तो यह संभव है कि मैं शायद सचमुच वो करने में असमर्थ हो जाऊँ। इसके विपरीत, अगर मैं ये यकीन से करूँ कि मैं ये कर सकता हूँ, तो निश्चित रूप से उसे करने की क्षमता पा लूंगा, भले ही शुरू में मेरे पास वो क्षमता ना ही रही हो। यह कथन महात्मा गांधी द्वारा कहे गए हैं।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में। जैसा कि दोस्तों पिछले रविवार को कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में हमारी बातें चल रही थी सबके गांधी रचनात्मक कार्यक्रम के बारे में।
1: बिल्कुल,
0: अगर आज इसी कार्यक्रम के माध्यम से इस बातचीत को हम आगे बढ़ाए अंजलि जी, तो बताया जाता है कि समाज में भेदभाव पैदा करने वाला दूसरा बड़ा तत्व था कौमी भेदभाव। साथियों, गांधी जी ने अपने प्राणों को जोखिम में डालकर भी इसका सतत विरोध किया था।
1: बिल्कुल,
0: यह बात हर कोई जानता है। अंजलि जी, हमारे समाज में विद्यमान भेदभावों को बढ़ाने वाले तत्वों और इन तत्वों को समर्थन देकर अपनी राजनीति चलाने वाली सरकार ने इन भेदभावों का पोषण किया। हमारे समाज में अलग अलग सांप्रदायिक तत्वों ने स्वराज के पूर्व और बाद में भी कौमी भेदभाव के विष को सतत योजना पूर्वक बढ़ाया है। इससे राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयत्न किया है। एक सुस्वादी समाज बनाने में बाधक बनने वाला ये सबसे बड़ा तत्व रहा है।
1: जी जी,
0: गांधी जी ने आदिवासियों की सेवा के काम को रचनात्मक कार्यक्रम में स्थान देकर देश की भीतरी सुसंवादिता को करने एक दूसरा मार्ग बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस तरह की तमाम सेवाएं सिर्फ मानवता प्रेरित नहीं बल्कि संगीन राष्ट्र सेवाएं हैं और सच्चे अर्थ में अहिंसक समाज रचना की दिशा में किया जाने वाला एक काम है।
1: बिल्कुल,
0: स्वयं गांधी जी साथियों पूरे देश के आदिवासियों की दशा से इतने परिचित नहीं थे जितने उनके एक आजीवन साथी ठक्कर बापा थे। ठक्कर बापा द्वारा आदिम जाति सेवा संघ के माध्यम से उठाए गए काम को गांधी जी ने समर्थन दिया था।
1: बिल्कुल,
0: वही कांग्रेस संस्था का इस तरफ ध्यान खींचा था कि यह काम मानवता का तो है ही पर राष्ट्र की एकात्मकता के लिए भी उतना ही जरूरी है।
2: बिल्कुल कशिश, गांधी जी भली भांति जानते थे कि किसी भी समाज का मेरुदंड उसके नागरिकों का शिक्षण होता है। लंबे अनुभव के अंत में उन्होंने अपने सपने के अहिंसक समाज के लिए एक शिक्षण व्यवस्था की कल्पना की थी।
0: बिल्कुल,
2: वर्षों तक उसे अजमा कर देखा था। रचनात्मक कार्यों में भी उन्होंने शिक्षण को महत्वपूर्ण स्थान दिया था। समाज के शैक्षणिक पहलू में गांधी जी ने जन्म से मृत्यु तक की नई तालीम, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, स्वास्थ्य शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा इतने कार्यक्रमों को स्थान दिया था।
0: बिल्कुल,
2: गांधी जी ने दक्षिणी अफ्रीका में अपने बालकों की शिक्षा के सवाल से शिक्षण के क्षेत्र में रुचि लेनी शुरू की थी। फिनिक्स आश्रम और टॉलस्टॉय आश्रम में कशिश उन्होंने शिक्षण के बारे में गहरा चिंतन किया था।
0: बिल्कुल,
2: साबरमती में उन्होंने आश्रमी शाला चलाई थी। कांग्रेस ने जब विद्यालयों महाविद्यालयों के बहिष्कार की घोषणा की थी तब देश भर में स्थान स्थान पर उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा देश वाले विद्यापीठ खोले थे।
0: बिल्कुल,
2: अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ की स्थापना गांधी जी ने खुद की थी। 1927 में श्रोता साथियों जब देश में प्रांतीय स्वराज आया तब गांधी जी ने वर्धा में शिक्षण में रुचि लेने वाले लोगों का एक सम्मेलन बुलाया था। उसमें शिक्षण विषयक अपनी कल्पना प्रस्तुत की थी। 1935 में हरिपुर की महासभा के समय कांग्रेस ने शिक्षा के संबंध में गांधी जी के मूल विचार को स्वीकार करके उसे गति देने हेतु हिंदुस्तानी तालीम संघ नामक संस्था स्थापित की थी।
0: बिल्कुल,
2: प्रांतीय सरकारों के अमल के दरमियान अनेक राज्यों की सरकारों ने अपने प्रांत के शिक्षा विभाग में नई तालीम की कल्पना को स्वीकार करके उसे क्रियान्वित करना शुरू किया था।
0: जी हाँ अंजलि जी, साथियों नई तालीम की मूल कल्पना ये थी कि बालक का शिक्षण उसके जीवन के साथ जुड़ा होना चाहिए। वह शिक्षण बालकों के शरीर मन और आत्मा तीनों के विकास हेतु होना चाहिए। अंजलि जी,
1: जी जी,
0: साथ ही गांधी जी को यह विश्वास था कि प्रत्येक बालक में अपार शक्तियाँ और संभावनाएं विद्यमान रहती है। शिक्षण का काम इन शक्तियों को बाहर लाने का है। शिक्षण यानी कि मात्र सूचनाएं ही नहीं बल्कि ज्ञान को पचाना। दोस्तों, आजकल के शिक्षण में बालक लिखने के लिए अपने तीन उंगलियों को काम में लेता है।
1: बिल्कुल,
0: यदि बालक प्रत्येक काम का लाभ ले तो उसे 200 उंगलियां काम में लेने का लाभ मिलेगा। बालक जिस घर गांव या समाज में बड़ा होता है उसके साथ में प्रत्येक व्यवहार भी उसे शिक्षण देने वाले होते हैं। जिस विशाल प्रकृति के बीच वह बड़ा होता है वह तो उसे प्रतिक्षण शिक्षण देने में समर्थ है। अतः नई तालीम ने उद्योग समाज और प्रकृति को

0: जीवन के बड़े माध्यम माने हैं।
1: बिल्कुल,
0: जीवन के अनुभवों के आधार पर ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया को नई तालीम अनुबंध कहती है। अनुबंध जीवन और ज्ञान का मेल करता है अंजलि जी। वहीं गांधी जी के शिक्षण संबंधित इन विचारों ने देश व दुनिया के शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान आकर्षित किया था।
1: जी हाँ कशिश, तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हम जान पा रहे हैं रचनात्मक कार्यक्रम में कुछ महत्वपूर्ण बातों को। ये बातें निरंतर आगे और भी कार्यक्रम के माध्यम से बनी रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।
0: बिल्कुल,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन, जिसमें हम जान रहे हैं सबके गांधी रचनात्मक कार्यक्रम के बारे में। श्रोता साथियों, गांधी जी के शिक्षण संबंधित इन विचारों ने देश व दुनिया के शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान आकर्षित किया था। शिक्षा शास्त्र के नए से नए सिद्धांतों के साथ ये विचार कशिश सुसंगत ठहरते थे।
1: बिल्कुल,
0: गांधी जी के विचारों के आधार पर शिक्षण के विविध प्रयोग करते हुए लोगों ने अलग अलग उम्र और ज्ञान मर्यादा के अनुसार उनमें गहरे उतर कर इस संबंध में बहुत सारे विवरण भी खोज निकाले थे। शुरुआत में गांधी जी के शिक्षण विचार प्राथमिक शिक्षण के क्षेत्र में आजमाए गए। इस शिक्षण को आधारभूत शिक्षण या बुनियादी शिक्षा कहा गया। इस विचार का विकास होते होते इसमें पूर्व बुनियादी, उत्तर बुनियादी और उत्तम बुनियादी या उच्च शिक्षण जैसी श्रेणियां बनाई गई। रचनात्मक कार्यक्रम बुनियादी शिक्षा के इस तमाम क्षेत्र को शामिल करता है। श्रोता साथियों, शिक्षण क्षेत्र में रचनात्मक कार्यों का दूसरा एक अंग वैसे तो नए पुराने सभी शिक्षण पर लागू होता है, पर देश की तत्कालीन परिस्थिति देखकर गांधी जी ने उस पर विशेष ध्यान दिया था। आज स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आधी सदी बीत चुकी है, तब इसका महत्व गांधी जी के काल में जितना था उससे जरा भी कम नहीं है। रचनात्मक कार्यक्रम की सूची श्रोता साथियों, गांधी जी के प्रांतीय भाषाएं और राष्ट्रभाषा दो अलग अलग कार्यक्रम रखे थे। प्रांतीय भाषा यानी कि संबंधित प्रांतों के लोगों की मातृभाषा पर हमारे पढ़े लिखे वर्ग ने उसकी अपेक्षा की और परिणाम एक तरफ लोग शिक्षितों से दूर होते गए और बहमा अंधश्रद्धा के अंधेरे में पड़े रहे, तो दूसरी तरफ सुशिक्षित लोग भी सामान्य जनता से अलग थलग पड़े गए।
1: जी हाँ दिले जी, साथियों वे देश की नब्ज को परख नहीं सकते हैं और अधिकांशतया विदेशी भाषा के माध्यम से विदेशी अनुकरण से बाहर नहीं आते। हमें यह भी समझना चाहिए कि देश की प्रांतीय भाषाएं सैकड़ों वर्षों पुरानी और कई तो हजार वर्ष से भी पुरानी संस्कृति की विरासत को संचित की हुई है।
0: बिल्कुल,
1: इसका संपर्क टूट जाए तो संस्कृति के साथ संपर्क भी टूट जाएगा। नरसी मीरा, तुलसी, सूर, कबीर, नानक और दक्षिण के संत व कवि, तत्वज्ञानी, सूफी विज्ञान के ज्ञाता, इन सभी की विरासत के बिना आजकल के पढ़े लिखे लोग अंकविहीन शून्य जैसे हो रहे हैं।
0: जी हाँ
1: अंजलि जी, सामान्य जनता को भी ये समझना चाहिए कि संस्कार के सभी प्रगतिशील देशों में प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक तमाम शिक्षण मातृभाषा में ही दिया जाता है। भाषाएं चाहे जितनी सीखो, ज्ञान चाहे जितना प्राप्त करो, पर शिक्षण का माध्यम तो विद्यार्थी के लिए जो भाषा सरल व स्वाभाविक है वही होनी चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: गांधी जी जब शिक्षण अफ्रीका से स्थायी तौर पर भारत में रहने के लिए आए थे तब उन्होंने देखा कि यहाँ हर पढ़ा लिखा व्यक्ति अंग्रेजी में बोलने लिखने में अपना बड़प्पन समझता है।
0: जी हाँ,
1: गांधी जी ने आग्रह करके उनमें से बहुतों को मातृभाषा में बोलना शुरू कराया था।
0: जी हाँ,
1: एक समय गांधी जी द्वारा स्थापित गुजरात विद्यापीठ मातृभाषा में सर्वोच्च सेवा के लिए विख्यात भी थी।
0: बिल्कुल कशिश, देश में राष्ट्रभाषा की हालत भी दयनीय थी। पढ़े लिखे लोग यह सम्मान अंग्रेजी भाषा को ही देते थे। अलग अलग भाषा बोलने वाले दो व्यक्ति इकट्ठे होते तो वे अंग्रेजी में ही बातचीत करते। कई जाने माने गांधी जन भी राष्ट्रभाषा के ज्ञान से वंचित थे। गांधी जी ने श्रोता साथियों दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा स्थापित की, जहां लाखों तरुण वर्णियों को हिंदी सिखाई गई। अपने सबसे छोटे पुत्र देवदास को उन्होंने इस काम के लिए ही दक्षिणी भारत भेजा था।
1: बिल्कुल,
0: तो कशिश जैसा कि कार्यक्रम में हमने जाना सबके गांधी रचनात्मक कार्यक्रम में कुछ महत्वपूर्ण बातों को, अगले रविवार विशेष कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से फिर से मुलाकात होगी इसी प्रकरण में कुछ प्रमुख बातों के साथ में।
1: जी हाँ, नफरत

0: साथियों सुनना ना भूलिएगा कार्यक्रम गांधी आत्म दर्शन वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। नमस्कार।
1: जागृति बुन आपने कार्य सोचू है अगर आप बूंदे रुके जाएगा तो हूँ था
2: नाना अंजलि बोन हूँ था का
1: अरे जागृति बोन आपड़ी जे नदिया है ई हुकी जाएगा खेतर बंजर थे जाएगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
2: ओ अंजलि बोन एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
1: होवे जागृति बोन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
2: होवे अंजलि बोन आपड़े भाई बोन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करवो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
1: होवे होवे जागृति बोन आपड़े भाई बोनो ने कहो कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
3: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: भाई ने बोनो आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ नी छाव में आपड़े रह या आपड़े नी कितली शांति मिले है जीनी हवा में आपड़े हाल रह ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है। होवे अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नती बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
1: होवे प्रकृति ने बचावो भविष्य ने हदारो।
4: होवे आज नाना ना कदम है ये अब्बा वाला काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
3: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: नमस्कार साथियों आइए सुनते हैं कार्यक्रम दादी माँ की रसोई। नमस्कार साथियों आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम दादी माँ की रसोई आपके अपने सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। साथियों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज वार रविवार का दिन है और हर रविवार को हम कार्यक्रम दादी माँ की रसोई के माध्यम से एक नई स्वास्थ्यप्रद व्यंजन विधि को लेकर हाजिर हो जाते हैं। तो आज भी कार्यक्रम में एक नए व्यंजन को लेकर मैं जुड़ चुकी हूँ आप सभी के साथ। साथियों आज हम बनाने वाले हैं 5 मसाला वाला पराठा। जी हाँ क्योंकि साथियों ये पराठा सिर्फ पेट नहीं भरता बल्कि शरीर को भी ताकत देता है। हम देखते हैं श्रोता साथियों कि आज के इस कार्यक्रम में जो व्यंजन हम बना रहे हैं 5 मसाला पराठा वह न सिर्फ स्वाद में लाजवाब है बल्कि सेहत में भी शानदार है और बनाने में भी बेहद आसान। तो आज के इस कार्यक्रम में ढेर सारी बातें हम करेंगे इस विषय को लेकर आपसे जानेंगे कि इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी और हम इसे कैसे बना सकते हैं। तो बातें ढेर सारी होंगी लेकिन जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है। तो आइए साथियों पहले मनोरंजन कर लेते हैं हम इस गीत के साथ में। फिर मैं आपको बताऊंगी कि 5 मसाला पराठा बनाने के लिए हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। तो आप कहीं जाइएगा नहीं बने रहिएगा कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में।

साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में। जैसा कि साथियों, गीत से पहले मैंने आपको आज के इस कार्यक्रम में मेरी आपसे कौन सी बातचीत की रेसिपी रहने वाली है ये तो बता ही दिया। आज हम बात कर रहे हैं श्रोता साथियों, पांच मसाला पराठा विधि के बारे में। अगर इसकी सामग्री के बारे में आपको बताऊं दोस्तों, तो सबसे पहले आप पेन और कॉपी ले लीजिए, मैं आपको इसकी सामग्री बता देती हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं साथियों, इस व्यंजन को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम आटा लगाने के लिए लेंगे गेहूं का आटा, नमक स्वाद अनुसार, पानी हमें चाहिएगा आवश्यकता के अनुसार जो कि हम आटा गूथने के लिए उपयोग में लेंगे। इसी के साथ ही हमें पांच तरह के मसाले चाहिए होंगे, जैसे कि हम जीरा लेंगे एक छोटा चम्मच, धनिया पाउडर एक छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच, हल्दी आधा छोटा चम्मच, गरम मसाला आधा छोटा चम्मच। तो साथियों, ये तो हमारे पांच मसाले हो गए। इसी के साथ और भी सामग्री आपको चाहिए होगी। बारीक कटा हुआ प्याज आप लें, हरी मिर्च एक या दो, वो भी बारीक कटी हुई होनी चाहिए, हरा धनिया आप थोड़ा सा ले लें कटा हुआ, नमक का इस्तेमाल करें स्वाद अनुसार, और तेल और घी की आवश्यकता होगी जिसका उपयोग हम पराठों को सेंकने के लिए करेंगे। तो दोस्तों, ये तो सामग्री रही। अगर आपने नहीं लिखी है तो मैं फिर से सामग्री दोहराना चाहूंगी, ताकि अगर कुछ लिखना छूट गया हो तो आप उसे लिख सकते हैं। श्रोता साथियों, आटा बनाने के लिए हमें सबसे पहले गेहूं का आटा लेना है 2 कप, नमक स्वाद अनुसार, पानी का हम इस्तेमाल करेंगे आटा गूंथने के लिए वो भी आवश्यकता अनुसार, 5 तरह के मसाले का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे जैसे कि जीरा 1 छोटा चम्मच, धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच, हल्दी पाउडर 1 छोटा चम्मच या फिर आप आधा छोटा चम्मच भी ले सकते हैं, गरम मसाला आधा छोटा चम्मच। इसी के साथ कुछ अन्य सामग्रियां भी हैं, जैसे कि बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, हरा धनिया थोड़ा सा बारीक कटा हुआ, नमक स्वाद अनुसार, तेल और घी का इस्तेमाल करना है जो कि पराठे सेंकने के लिए हम यूज करेंगे। तो दोस्तों, ये तो सामग्री यहाँ पर पूरी हो गई। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप इसे बनाएंगे कैसे, यानी कि बनाने के लिए आपको करना क्या है साथियों। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब ये श्रोता साथियों, स्वाद का असली राज इसमें छिपा हुआ है। सबसे पहले आटे में नमक डालकर पानी से नरम आटा आपको गूंथ लेना है और उसे 10 से 15 मिनट के लिए ढक कर रख देना है। दूसरा काम आप करेंगे मसाला तैयार करने का। एक बाउल में आपको लेना है प्याज जो कि बारीक कटे हुए होंगे, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, और जो 5 मसाले हमने लिए थे यानी कि जीरा, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक। अब इसमें श्रोता साथियों, थोड़ा सा नमक डालकर आप अच्छे से इसे मिक्स कर लें। अब आटे की लोई बनाएं, जो कि आपने आटा पहले से गूंथ कर रख रखा था उसकी आप लोई बना लें। उसे थोड़ा सा बेले श्रोता साथियों, बीच में मसाला भरे और फिर बंद करके हाथ से फिर से बेल लें। इतने में आप पास में तवा गर्म होने के लिए रख दे पहले से ही। तवा गर्म अगर हो जाए तो उस पर पराठे को डालें, दोनों तरफ से घी या तेल लगाकर सुनहरा होने तक सेंके श्रोता साथियों। और अब देखिए, गर्मा गर्म 5 मसाला पराठा बनकर तैयार है। आप इसे श्रोता साथियों सॉस या किसी भी सूखी सब्जी के साथ खा सकते हैं। ये काफी खाने में स्वादिष्ट लगता है और हमारे सेहत के लिए भी बेहतर है। तो जैसा कि बातें बहुत अच्छी चल रही है, आगे हम कार्यक्रम के माध्यम से इस व्यंजन के फायदों के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको मनोरंजन करवाना चाहूंगे यहाँ पर एक गीत के साथ में। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में।

सुश्रुता साथियों, गीत तो यहाँ पूरा हो गया और गीत से पहले जैसा कि हमारे पराठे बनकर तैयार हो चुके थे, अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस व्यंजन को बनाने से क्या क्या फायदे होंगे। तो सबसे पहले तो श्रोता साथियों, इस व्यंजन को बनाने में हमने जो गेहूं के आटे का उपयोग किया है वो हमें ऊर्जा देता है। अगर मसालों की बात करूं तो जिन मसालों का हम इसमें उपयोग कर रहे हैं वो पाचन को बेहतर बनाते हैं और किसी भी प्रकार से नुकसानदायक नहीं है। प्याज का इस्तेमाल भी जैसा कि हमने किया, जो कि शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है साथियों, तो ये भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि शरीर के लिए लाभदायक है ही। और जो मसाले हम इसमें उपयोग में ले रहे हैं वो मेटाबॉलिज्म को भी तेज करते हैं, तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। ये पराठा श्रोता साथियों, खासकर बच्चों और युवाओं के लिए जरूरी है क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इससे बढ़ेगी। अब साथियों, इस व्यंजन से जुड़े कुछ सुझाव है जो मैं आपको देना चाहूंगी। जैसे कि आटा आपको ज्यादा सख्त नहीं गूथना है, आटा आपको नरम ही गूथना है, क्योंकि अगर आप जब आटे को सख्त गूथेंगे श्रोता साथियों, तो हो सकता है कि आपके पराठे सॉफ्ट ना बने। इसी के साथ मसाले का पेस्ट जो आपने तैयार किया है वो ज्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए। पराठे को हमें धीमी आंच पर ही सेकना है साथियों। घी का और तेल का अगर हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें अगर हम घी का इस्तेमाल करते हैं तो स्वाद और सेहत दोनों बढ़ेगी। और अगर आप चाहें श्रोता साथियों, तो इसमें आलू या पनीर भी मिला सकते हैं, ये भी एक अच्छा कह सकते हैं कि सुझाव है। तो दोस्तों, ये तो हमारे आपसे सुझाव पूरे हुए, क्योंकि हम देखते हैं कि आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम फास्ट फूड की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं, लेकिन साथियों असली स्वाद और सेहत तो हमारे घर की रसोई में ही है। और कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में हम ऐसे ही विधियां आपके लिए लेकर आते हैं जो आप घर पर बनाकर अपने स्वाद की पूर्ति कर सकते हैं साथियों। क्योंकि जब भी हमें कुछ चटपटा खाने का मन करता है तो हम घर पर ही इन चीजों को बनाकर हमारी जो इच्छा है उसकी पूर्ति कर सकते हैं। क्योंकि श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि जो घर का खाना होता है वो सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि दिल को भी खुश करता है। तो दोस्तों, ये थी आज के इस कार्यक्रम में हमारी आपसे बातें। अब जैसा कि बातें ढेर सारी हो चुकी है, समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। तो विदा तो मैं जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले आपको मनोरंजन करवाना चाहूंगी एक और गीत के साथ में। आप बने रहिएगा कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में।

श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम दादी माँ की रसोई अब यही समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ साथियों कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी मेरी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, हमारा पता है कार्यक्रम दादी माँ की रसोई, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए साथियों आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे एक नए कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में एक नई रेसिपी विधि और सामग्री के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपके अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बुंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिया है, ये हुके जाएंगा। खेतर, बंजर थे ही जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है, ये भी रुके जागा।
1: ओ अंजलि बुन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कह कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बार तेनू खवानू सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
4: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राखंगा।
5: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन थकी भरपूर तत्व नु करो भोजन।
7: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके।
8: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
9: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े मई देखाए तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
10: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
11: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
12: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची शकंगा।
5: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

भाई बोनो, घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। मानी दुआ, पिता नी उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटले गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

बागर रेडियो 90.8 एफएम प्रस्तुत करता है जनता जनार्दन का जनता के लिए कार्यक्रम हम और हमारा संविधान। जी हां साथियों, भारतीय संविधान से जुड़ी तमाम जानकारियों को समुदाय तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य यही है कि सभी लोग संविधान की विकास गाथा को जानें और उसके उद्देश्यों को समझें।

साथियों, संविधान हमारी आन है, तिरंगा हमारी शान है, हिंदुस्तान हमारी जान है, हिंदुस्तान पर जान हमारी कुर्बान है। जी हाँ, ये हम सबकी पहचान है, इसको शत शत प्रणाम है, क्योंकि यह हम सबका अभिमान है।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हम और हमारे संविधान में। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से पिछले रविवार ये हमारी आपसे बातचीत रही थी भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की कहानी। इसी के साथ हमने औपनिवेशिक भारत का पहला ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज की अनुपस्थिति की पीड़ा, प्रतिरोध का पहला भारतीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज की पहल पिंगली वेंकैया की भूमिका, इसी के साथ हमने जाना था स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज चरखे की जगह कैसे आया चक्र।
1: जी बिल्कुल,
0: यही जानते हैं अशोक यानी अंतर्राष्ट्रीयता, तिरंगा यानी स्वाधीनता।
1: जी बिल्कुल, जागृति जी, नेहरू जी कहते हैं कि भारतीय इतिहास में अशोक का काल वास्तव में इतिहास का अंतर्राष्ट्रीय काल था। वह संकीर्ण काल न था, यह वह समय था जागृति जी जब भारतीय राजदूत सुदूर विदेशों में गए।
0: जी हाँ,
1: साम्राज्य और साम्राज्यवाद के रूप में नहीं बल्कि शांति, सदाचरण और शुभकामना का संदेश लेकर। इसलिए जिस झंडे को आपको भेंट करने का सम्मान मुझे प्राप्त हुआ है वह झंडा साम्राज्यवाद का नहीं बल्कि स्वतंत्र का झंडा है। और वह केवल हमारी स्वतंत्रता का नहीं बल्कि उन सभी मनुष्यों की जो भी इसे देखे उनके स्वतंत्रता का चिन्ह है। यह दूर दूर तक पहुँचेगा, केवल वही नहीं जहाँ भारतवासी दूत तथा मंत्री के रूप में रह रहे हैं बल्कि समुद्र पार जहाँ भारतीय जहाजों द्वारा यह ले जाया जाएगा। यह चाहे जहाँ कहीं भी पहुँच जाए, मैं आशा करता हूँ कि लोगों को यह स्वतंत्रता का संदेश देगा, मित्रता का संदेश देगा और यह संदेश देगा कि भारत संसार के प्रत्येक देश से मैत्रीपूर्ण संबंध रखना चाहता है।
0: जी हाँ।
1: और जो लोग स्वतंत्रता चाहते हैं उसकी सहायता करना चाहते हैं।
0: बिल्कुल, इसी के साथ साथियों आपको गांधी जी की नाराजगी को लेकर कुछ बातें बताएं। तो हालांकि जब महात्मा गांधी जी को पता चला था अंजलि कि राष्ट्रीय ध्वज में चरखे के चक्र के स्थान पर अशोक चक्र स्थापित किया गया है,
1: जी हाँ,
0: तो वे दुखी हो गए थे। उन्होंने कहा कि ऐसा ध्वज कितना ही सुंदर क्यों न हो, मैं उसे नमन नहीं करूंगा। वह बिना चरखे वाले राष्ट्रीय झंडे को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। साथियों, बाद में उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया और कहा कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बना चक्र अहिंसा का देवीय कानून है।
1: जी बिल्कुल, कहना चाहेंगे श्रोता साथियों, कांग्रेस का ध्वज राष्ट्रीय ध्वज न बने, यानी कि यह जानना दिलचस्प है कि स्वयं कांग्रेस ने यह सुनिश्चित किया कि कहीं कांग्रेस के झंडे को ही भारत का राष्ट्रीय ध्वज न बना दिया जाए। दरअसल स्वतंत्रता आंदोलन के समय प्रतीकात्मक ढंग से फहराए जाने वाले झंडे को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे के रूप में देखा जाता था।
0: जी हाँ,
1: आजादी से कुछ महीने पहले दिल्ली में एशियाई देशों का सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में मंच पर एशिया के सभी देशों के झंडे और उनके प्रतीक चिन्ह लगे थे, लेकिन भारत ने वहाँ कोई झंडा नहीं लगाया क्योंकि भारत नहीं चाहता था कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दल आधारित राजनीति के लिए कोई स्थान हो।
0: बिल्कुल, इसी के साथ अगर राष्ट्रीय ध्वज और खादी के बारे में अंजलि हम हमारे श्रोता साथियों को बताएं, तो संविधान सभा ने चक्र युक्त तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार कर लिया।
1: जी हाँ।
0: इसके पश्चात 15 अगस्त 1947 यानी कि आजादी के दिन की तैयारी के लिए संविधान सभा कार्यालय ने किसी कपड़ा मिल को 3000 झंडे बनाने का आदेश दे दिया। जब इस बात का पता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चला तो उन्होंने तत्काल उस आदेश को रद्द करवाया और 27 जुलाई 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखा कि हमें केवल हथकरघे से बने हुए झंडों का ही उपयोग करना चाहिए।
1: जी हाँ।
0: क्योंकि हमारी संविधान सभा के प्रस्ताव में ये उल्लेख नहीं था कि राष्ट्रीय ध्वज हथकरघे और खादी के होने चाहिए, इसलिए आवश्यक है कि इससे संबंधित निर्देश सभी शासकीय कार्यालयों को भेजे जाए। अगर कोई अन्य कपड़ा इस्तेमाल किया गया तो इससे बापू की भावनाओं को ठेस पहुँचेगी।
1: जी बिल्कुल,
0: 27 जुलाई 1947 को ही नेहरू जी ने इसका सहमति के साथ जवाब दिया और सभी कार्यालयों को खादी के कपड़े के ध्वज फहराने के निर्देश दिए।
1: जी बिल्कुल, यही बात करें श्रोता साथियों, भय हिंसा का प्रतीक नहीं है भारत का राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, तो श्रोता साथियों, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस

0: भी दृष्टि से भय या हिंसा का प्रतीक नहीं है। संविधान सभा के सदस्य एस नगप्पा ने उचित ही कहा था कि हमारा ध्वज यह भी बताता है कि देश क्या चाहता है। हम दूसरे देशों को कैद नहीं करना चाहते हैं। हम साम्राज्यवादी नहीं बनना चाहते हैं। हम दूसरे देशों को अपने सामने शीश झुकाते नहीं देखना चाहते हैं।
1: बिल्कुल। तो जैसा कि अंजलि हम बात कर रहे हैं कार्यक्रम हम और हमारे संविधान में, ये बातें हम आगे भी करेंगे, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में। जैसा कि जागृति जी गीत से पहले हमने जाना कांग्रेस का ध्वज राष्ट्रीय ध्वज न बने, राष्ट्रीय ध्वज और खादी के बारे में, भय और हिंसा का प्रतीक नहीं है भारत का राष्ट्रीय ध्वज, यही बात करते हैं तिरंगा सांप्रदायिक प्रतीक नहीं है।
1: जी हाँ
0: श्रोता साथियों, यह दुर्भाग्य की बात है कि आम जनता के एक वर्ग में यह गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की गई कि तिरंगे का केसरिया रंग हिंदुओं का तथा हरा रंग मुसलमानों का प्रतीक है। ऐसा करके देश के राष्ट्रीय ध्वज को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई, परंतु यह बात तथ्यात्मक दृष्टि से पूरी गलत है। यह एक ऐसा झंडा है जिसके बारे में अलग अलग बातें कही जाती हैं। कई लोग इसका गलत मतलब लगा बैठे हैं और वे इसे सांप्रदायिक नजरिए से देखते हैं। ये लोग मानते हैं कि इसका कोई हिस्सा इस या उस समुदाय की नुमाइंदगी करता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि जब यह झंडा तैयार किया गया तो कोई सांप्रदायिक संकेत इसमें नहीं जोड़ा गया।
1: जी हाँ बिल्कुल, भारत के वास्तविक आंदोलनकारियों ने सांप्रदायिकता के हर प्रतीक को निष्क्रिय करने का हर संभव प्रयास किया था। अंजलि, तिरंगे ध्वज की व्याख्या ऐसा ही एक प्रयास है। साथियों, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में भारत के राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार करने को लेकर हुई चर्चा में बेहद खूबसूरत दार्शनिक व्याख्या हुई।
0: जी हाँ।
1: संभवतः सभा के सदस्य चाहते थे अंजलि कि तिरंगे की कभी गलत व्याख्या न हो पाए।
0: जी हाँ।
1: ये भारत की पहचान बने। तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए सभा को यह अनुमान था कि राष्ट्रीय पताका का भी सांप्रदायिकरण करने की कोशिश होगी।
0: जी बिल्कुल श्रोता साथियों, यही बात करें तिरंगे की व्याख्या की तो श्रोता साथियों, संविधान सभा में पंडित नेहरू ने कहा था कि कुछ लोग इसके महत्व को न समझकर सांप्रदायिक रूप में सोचने लगे और यह विश्वास करने लगे कि अमुक भाग अमुक संप्रदाय का प्रतीक है। कहना चाहेंगे, लेकिन मैं यह कह सकता हूँ कि जब इस झंडे का रूप विचारा गया था तब इसके साथ कोई सांप्रदायिक चीज न थी। हमने झंडे के एक ऐसे नमूने का विचार किया था श्रोता साथियों, जो सुंदर हो, क्योंकि राष्ट्र का प्रतीक देखने में सुंदर होना चाहिए, जो अपने पूरे रूप में तथा पृथक पृथक भागों में राष्ट्र की प्रवृत्ति का, राष्ट्र की परंपरा का, हजारों वर्षों से भारत में प्रचलित उसके मिश्रित रूप का प्रतीक स्वरूप भी हो। इसमें अंदर सुंदर बातों का सादृश्य है, आत्मा संबंधी और मन संबंधी बातों का, क्योंकि कोई भी राष्ट्र केवल भौतिक वस्तुओं के आधार पर जीवित नहीं रहता, यद्यपि वे बड़ी महत्वपूर्ण है। जागृति जी, भारत ऐसा राष्ट्र जिसका अतीत बहुत प्राचीन है, अन्य उपकरणों पर भी जीवित रहता है और वे है आध्यात्मिक उपकरण।
1: बिल्कुल, सेठ गोविंददास ने कहा है अंजलि कि इस झंडे के तीन रंगों में सांप्रदायिकता नहीं है, किंतु एक समय ऐसा अवश्य था जब तीन रंगों यानी लाल सफेद और हरे रंग में सांप्रदायिकता थी।
0: जी जी,
1: जो लोग कहते हैं कि भगवा हिंदुओं का रंग है, उनसे मेरा कहना है कि यह गलत है। महाभारत के समय आपको मालूम होगा कि रंगों का कोई प्रश्न नहीं था, तब अर्जुन के रथ पताके पर हनुमान का चिन्ह था, कर्ण के रथ पर हाथी की पताका थी, इसलिए किसी रंग को हिंदुओं का प्राचीन रंग कहना ऐतिहासिक भूल है।
0: जी हाँ।
1: सर एस राधा कृष्णन ने कहा है कि लाल नारंगी और कैसरिया रंग त्याग की भावना दिखाते हैं। कहा गया है कि सर्वे त्यागा राज धर्मेशु दृष्टा, अर्थात त्याग के समस्त रूप राज धर्म के अंतर्गत है। दार्शनिक को राजा होना चाहिए, वह ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिनमें त्याग की भावना कुट कुट कर भरी हो।
0: जी हाँ।
1: साथियों, वह त्याग जो इतिहास के आरंभिक दिनों से ही इस केसरिया रंग ने हमें भरा है, ये सिद्ध करता है अंजलि कि संसार धनाढ्यों का नहीं है,
0: जी जी,
1: संपन्न व्यक्तियों का नहीं है, बल्कि दीनहीन कर्तव्य परायण और वीरांगनियों का है। वैराग्य और त्याग की वह भावना नारंगी या केसरिया में प्रदर्शित की गई है। ये झंडा किसी संप्रदाय विशेष का नहीं है, ये झंडा हिंदू का नहीं, मुसलमान का नहीं, ईसाई का नहीं, यहूदी का नहीं, जैन सिख बौद्ध किसी का नहीं, ये झंडा सारे हिंदुस्तान का है।
0: जी बिल्कुल, यही बात करी जागृति जी, तिरंगे में है प्रकृति के तीन रंग। यानी कि श्रोता साथियों, मौलवी सैयद मोहम्मद शादुल्ला ने कहा कि यदि मुझे प्रकृति से उपमा देने की आज्ञा दी जाए तो केसरिया पृथ्वी की दशा बतलाता है, वह तप्त दशा जो भारतीय सूर्य की भीषण ताप द्वारा हो जाती है, जबकि मोती समान श्वेत स्वच्छ जल वृष्टि होती है और वह जल बर्फ से गढ़ी हुई पहाड़ियों से नदियों में आता है, तो हमारी मरुभूमि भी हरित भूमि में परिवर्तित हो जाती है।
1: जी हाँ।
0: जिसकी उपज हमें जीवित रखती है और जन समुदाय की वृद्धि के लिए उत्पादन करती है।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों में सफेद रंग पवित्रता का चिन्ह है। मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इस उत्तम विचार के लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपने मत का चिन्ह सफेद टोपी रखा है। झंडे का सफेद भाग
1: हमें ये याद दिलाता है कि हम केवल शब्दों में ही नहीं वरन कर्मों में भी पवित्र हैं। हमें सदैव यह स्मरण रखना चाहिए जागृति जी कि हम यहाँ केवल अपने भौतिक लाभ के लिए नहीं बल्कि अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी हैं। यह चक्र धार्मिक चिन्ह है और हम अपने धार्मिक वातावरण से अपने सामाजिक जीवन का विच्छेद नहीं कर सकते।
2: बिल्कुल अंजलि, सेठ गोविंदास ने कहा है कि यदि हम हरे रंग पर दृष्टि डालें तो मालूम होगा कि एक समय यह रंग स्वतंत्रता संग्राम के झंडे का रंग था। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में हमारे झंडे का रंग हरा ही था। उस समय यह रंग हरा रंग न केवल मुसलमानों का रंग था, न केवल हिंदुओं का भी रंग था, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम में जूझने वाले सभी लोगों का रंग था।
1: इसी के साथ इस राधा कृष्णन ने हरे रंग की व्याख्या करते हुए कहा है जागृति जी कि यह रंग यहाँ की वनस्पति जीवन से है जिस पर हम सब सभी प्राणी मात्र निर्भर हैं, हमारा संबंध प्रकट करता है। हमको इसी हरित भूमि पर अपना स्वर्ग बनाना चाहिए। यदि हमें इस प्रयत्न में सफल होना है तो हमें श्वेत का अनुसरण करना चाहिए, धर्म चक्र का पालन करना चाहिए, आत्मनियंत्रण और त्याग की नीति ग्रहण करनी चाहिए। यह पताका हमें आदेश देती है कि सदैव तत्पर रहो, सदैव प्रगति करते रहो, आगे बढ़ो, स्वतंत्र परिवर्तनीय दयावान सभ्य और प्रजातंत्रात्मक समाज की स्थापना करने का प्रयत्न करो जिसमें ईसाई सिख मुसलमान हिंदू बौद्ध सभी शरण में आ सके।
2: जी हाँ, तो जैसा कि अंजलि आज हमने बहुत ही अच्छी बातें की कार्यक्रम हम और हमारे संविधान में, अंत में कहना चाहेंगे हमारे श्रोता साथियों को कि झंडा हिंदू का नहीं, मुसलमान का नहीं, ईसाई का नहीं, यहूदी का नहीं, जैन सिख बौद्ध किसी का नहीं, ये झंडा सारे हिंदुस्तान का है। इन्हीं कुछ पंक्तियों के साथ आज के इस कार्यक्रम को विराम देना चाहेंगे।
1: जी हाँ।
2: अगले रविवार ये कार्यक्रम में फिर से मुलाकात होगी एक नए प्रकरण के साथ में, उसमें हम जानेंगे राष्ट्रीय ध्वज आदिवासी दृष्टिकोण।
1: जी बिल्कुल।
3: साथियों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम हम और हमारा संविधान। अगले रविवार को फिर मुलाकात होगी संविधान से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।
4: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
5: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
4: होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
6: हिंडो स्कूल जा आपड़े, आपड़ा भी अपना पूरा करो।
5: याद रखिए कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है, हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
4: होवे जय वरे सब सोरा भणेगा तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
5: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
1: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। जागृति बुंद, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था
7: नाना अंजलि बुंद, हूँ था का?
1: अरे जागृति बुंद, आपड़ी जे नदी है ये रुके जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुके जाएगा।
7: ओ अंजलि बुंद, इतले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
1: होवे जागृति बूंद, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
7: होवे अंजलि बूंद, आपड़े भाई बूंद थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
1: होवे होवे जागृति बूंद, आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचाओ पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो, जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
3: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
8: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जांच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है, ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: amore mio, dove sei tu? Ehi, kya ga rahi?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।

तो भाइयों बनो, आ तो हती हमारी आज की सभा। हमें आशा करा कि आज की सभा में प्रसारित थावा वारा कार्यक्रम गीत संगीत आपने पसंद आई हुआ होगा। आपने हमारा आज ना कार्यक्रम केवा लाग्या, इन्हें बल्ले आप हमने राय सुझाव आली सको हमारे अणा पता माते। हमारो पतु है वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्टर कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारो पिन कोड नंबर है 3270001। अजी वधारे जानकारी बल्ले आप हमने फोन करी सको हमारे अणा फोन नंबर माते। हमारो फोन नंबर है 9460051234। तो भाइयों बोनो, आ तो हती हमारी आज की सभा। बीजी सभा में फेरी मुलाकात थागा, तारुदी आपनी साथी अंजलि नु राम राम।

0: आज के सुविचार।
1: मनुष्य का जीवन हार और जीत, विजय और पराजय, सफलता और असफलता के मध्य झूलता रहता है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, है ना? जब आप सफल होते हैं, किसी चुनौती पर विजय पाते हैं, तो मन प्रसन्नता से आनंद के उपवन में झूमने लगता है। और जब आप असफल होते हैं, तब मन दुख और पीड़ा के सागर में डूबने लगता है। परंतु वास्तव में सफलता और असफलता है क्या? तनिक ध्यान से सोचिए। ये केवल हमारी मनोस्थिति मात्र है। हमारी पराजय तब नहीं होती जब हमारा शत्रु विजय प्राप्त कर ले। हमारी पराजय तब होती है जब हम पराजय स्वीकार कर लें। हम असफल तब नहीं होते जब हम लक्ष्य ना पा सके। हम असफल तब होते हैं जब हम प्रयास करना बंद कर दें। इसलिए प्रयास करते रहें और हार ना माने, क्योंकि जिस दिन आप हार स्वीकारना बंद कर देंगे, जीत आप

साथियों, संघर्ष से सफलता तक, अन्याय से न्याय तक मानवता की राह पर चलने वाली महान व्यक्तियों को हमारा नमन है।

0: साथियों, इस गीत के बाद और चंद पंक्तियों के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा में। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
1: और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
0: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
1: नमस्कार।
0: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं जागृति जी कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा को लेकर, एक नए व्यक्तित्व की जीवन परिचय को लेकर। आशुता साथियों, इस कार्यक्रम में हम ऐसे महान व्यक्तित्व की बात करेंगे जिन्होंने ये साबित कर दिया कि नफरत का जवाब नफरत से नहीं बल्कि प्रेम, धैर्य और न्याय से भी दिया जा सकता है।
0: बिल्कुल,
1: आज का हमारा विशेष कार्यक्रम समर्पित है नेशनल मंडेला को। हम बात करेंगे जागृति जी आज कार्यक्रम के माध्यम से कि किस तरीके से उन्होंने साहस, दृढ़ संकल्प और सेवा भाव से पूरी दुनिया में बदलाव लाया था। तो श्रोता साथियों, महापुरुषों का जीवन केवल इतिहास नहीं होता है बल्कि जागृति जी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी होता है।
0: बिल्कुल,
1: मंडेला का जीवन भी हमें यही सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि इरादे मजबूत हो तो असंभव भी संभव हो जाता है।
0: जी हाँ अंजलि, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं ऐसे महान व्यक्तित्व की जिन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय अन्याय और भेदभाव के खिलाफ संघर्ष में बिताया। एक ऐसा नेता जिन्होंने जेल की सलाखों के पीछे 27 वर्ष बिताने के बाद भी अपने मन में बदले की भावना नहीं रखी।
1: बिल्कुल,
0: एक ऐसे इंसान जिन्होंने दुनिया को ये सिखाया कि क्षमा, समानता और मानवता ही सच्ची ताकत है। हम बात कर रहे हैं दक्षिण अफ्रीका के महान नेता नेल्सन मंडेला की। श्रोताओं,
1: बिल्कुल,
0: नेल्सन मंडेला केवल एक राजनेता नहीं थे बल्कि वे न्याय, स्वतंत्रता और मानव अधिकारों के प्रतीक थे। उनका जीवन हमें ये सिखाता है अंजलि कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी यदि व्यक्ति अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ रहे तो वो इतिहास बदल सकता है।
1: बिल्कुल चक्रवर्ती जी, आपने सही कहा। मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका के मेवेजो गांव में हुआ था। जागृति जी, उनका पूरा नाम रोलिल्ला मंडेला था। रोलिल्ला का अर्थ है वह व्यक्ति जो व्यवस्था को चुनौती देता है। बचपन में शायद श्रोता साथियों किसी ने नहीं सोचा होगा कि यही बालक आगे चलकर पूरी दुनिया को न्याय, समानता और मानव अधिकार का सबसे बड़ा प्रतीक बनाएगा।
0: बिल्कुल,
1: मंडेला का परिवार शाही वंश से जुड़ा हुआ था, लेकिन जागृति जी उन्होंने आरामदायक जीवन की बजाय संघर्ष का रास्ता चुना। बचपन से ही वे अपने नेतृत्व के गुण दिखाते थे। गांव की बैठकों में वे बड़े बुजुर्गों के लोगों के साथ समस्या सुनते थे और मिलकर समाधान खोजते थे। यहीं से उनके मन में समाज के लिए काम करने की भावना विकसित हो गई थी।
0: बिल्कुल अंजलि, जैसे कि मंडेला जी के बचपन के बारे में बात करें तो श्रोताओं, मंडेला बचपन से ही जिज्ञासु और समझदार थे। उनके परिवार ने उन्हें शिक्षा का महत्व समझाया। गाँव के साधारण वातावरण में पले बड़े मंडेला ने बचपन से ही समाज में मौजूद असमानताओं को देखा और महसूस किया।
1: बिल्कुल,
0: उनकी प्रारंभ एक शिक्षा स्थानीय मिशनरी स्कूल में हुई। बाद में उन्होंने फोर्ट हेयर विश्वविद्यालय और विटवा टर्सेंड विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। उन्होंने कानून की पढ़ाई की और आगे चलकर वकालत को अपना पेशा बनाया।
1: बिल्कुल
0: अंजलि, रंग भेद की व्यवस्था और उसके प्रभाव को लेकर हमारे श्रोता साथियों को हम बताएं तो श्रोताओं, जब मंडेला युवा थे उस समय दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति लागू हुई थी।
1: बिल्कुल,
0: इस नीति के तहत अश्वेत लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा जाता था। अश्वेत नागरिकों को अलग बस्तियों में रहने के लिए मजबूर किया जा रहा था। वे स्वतंत्र रूप से यात्रा नहीं कर सकते थे और उन्हें मतदान का अधिकार भी नहीं था। मंडेला ने इस अन्याय को बहुत करीब से देखा। उन्होंने महसूस किया कि यदि समाज में समानता स्थापित करनी है तो इसके लिए संघर्ष करना ही होगा।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो यहीं से उनके संघर्ष की शुरुआत हो जाती है। युवा अवस्था में मंडेला ने कानून की पढ़ाई की और वकालत शुरू कर दी। उनका उद्देश्य केवल श्रोता साथियों मुकदमे लड़ना नहीं था बल्कि उन लोगों की मदद करना था जिन्हें न्याय नहीं मिल रहा था। वे लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने लगे। उन्होंने अनेक आंदोलनों में भाग लिया और लोगों को एकजुट भी किया। उनका विश्वास था श्रोता साथियों कि समाज में बदलाव तभी आएगा जब लोग अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी समझेंगे।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन जैसे जैसे उनका आंदोलन मजबूत होता गया, सरकार ने उन्हें अपना विरोधी मानना शुरू कर दिया। उन्हें बार बार गिरफ्तार किया गया, उन पर मुकदमे चलने लगे और उन्हें आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई। लेकिन दोस्तों, यहीं से उनके जीवन का सबसे कठिन और सबसे प्रेरणादायक अध्याय शुरू होता है।
0: बिल्कुल अंजलि, अगर स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी को लेकर हम बात बताएं तो 1944 में नेल्सन मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। ये संगठन रंगभेद के खिलाफ संघर्ष कर रहा था। मंडेला जी ने अपने साथियों के साथ मिलकर लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया। उन्होंने शांतिपूर्ण आंदोलन सभाओं और जन जागरण कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया।
1: बिल्कुल,
0: उनका उद्देश्य केवल अश्वेत लोगों के अधिकारों की रक्षा करना नहीं था, बल्कि एक ऐसा समाज बनाना था जहाँ सभी नागरिकों को समान अवसर और सम्मान मिले। धीरे धीरे मंडेला जी ने रंगभेद विरोधी आंदोलन के प्रमुख नेता बन गए। उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी और वे अन्याय के खिलाफ संघर्ष की आवाज बन गए।
1: बिल्कुल, तो जागृति जी, जैसा कि कार्यक्रम में हम श्रोता साथियों से मंडेला के जीवन परिचय को लेकर ढेर सारी बातें कर रहे हैं, ये बातें आगे भी श्रोता साथियों से यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन क्यों ना हमारे साथियों को हम यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत सुनवा दें।
0: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा में। जैसा कि जागृति जी, गीत से पहले हमने जाना कि किस तरीके से मंडेला का संघर्ष शुरू हुआ था। यही दोस्तों कहा जाता है कि किसी भी इंसान की असली पहचान उसके अच्छे समय से नहीं बल्कि कठिन समय से होती है। मंडेला के जीवन का सबसे कठिन दौर तब शुरू हुआ जब उन्हें 1964 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उन्हें दक्षिणी अफ्रीका की रोबेन द्वीप जेल में रखा गया था। यह जेल बहुत कठोर मानी जाती थी। उन्हें एक छोटी सी कोठरी में रहना पड़ता था, कठोर मेहनत करनी पड़ती थी और सीमित भोजन मिलता था और परिवार से मिलने तो बहुत ही कम अनुमति मिलती थी।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन इस कठिन परिस्थिति ने उनके विचारों को जागृति जी कमजोर नहीं किया। उन्होंने जेल में भी पढ़ना लिखना जारी रखा। वे अपने साथियों का उत्साह बढ़ाते थे और उन्हें निराश नहीं होने देते थे। उन्होंने एक बार कहा था कि साहस का अर्थ डर का न होना नहीं बल्कि डर पर विजय प्राप्त करना होता है।
1: बिल्कुल।
0: और यही कारण था कि जेल की दीवारें उनके शरीर को कैद कर सकी लेकिन उनके विचारों और उनके सपनों को नहीं।
1: बिल्कुल अंजलि, मंडेला जी ने लगभग 27 वर्ष जेल में बिताए और ये किसी भी व्यक्ति के जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी थी।
0: बिल्कुल।
1: दुनिया भर में लोग उनकी रिहाई की मांग करने लगे थे। कई देश संगठन और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने दक्षिण अफ्रीका सरकार पर दबाव भी बनाया था। आखिरकार श्रोता साथियों, 11 फरवरी 1990 को नेल्सन मंडेला जी को रिहा कर दिया गया। उनकी रिहाई केवल एक व्यक्ति की रिहाई नहीं थी बल्कि ये न्याय और समानता की जीत का प्रतीक थी।
0: बिल्कुल।
1: जेल से बाहर आने के बाद दुनिया ये सोच रही थी अंजलि कि मंडेला जी अपने विरोधियों से बदला लेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया था। उन्होंने कहा कि यदि वे नफरत को अपने साथ लेकर जेल से बाहर आएंगे तो वो वास्तव में आजाद नहीं होंगे।
0: बिल्कुल।
1: उन्होंने बदले की जगह क्षमा को चुना। उन्होंने सभी समुदायों को साथ लेकर चलने की बात कही। ये उनके महान व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता थी। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि नफरत से केवल विनाश होता है जबकि प्रेम और क्षमा समाज को जोड़ती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, वर्ष 1994 में दक्षिणी अफ्रीका में लोकतांत्रिक चुनाव हुए और मंडेला देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने।
1: बिल्कुल।
0: यह केवल उनकी व्यक्तिगत सफलता नहीं थी बल्कि उन लाखों लोगों की जीत थी जिन्होंने वर्षों तक समानता और न्याय के लिए संघर्ष किया था। राष्ट्रपति बनने के बाद भी उन्होंने सत्ता को सेवा का माध्यम नहीं माना। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी के उत्थान और राष्ट्रीय एकता का विशेष ध्यान रखा। उन्होंने कभी भी यह नहीं कहा कि केवल एक वर्ग आगे बढ़े बल्कि उनका सपना था कि हर नागरिक को समान अवसर मिले। महान नेता वह नहीं होता है दोस्तों जो सबसे आगे चलता है बल्कि वह होता है जो सबको साथ लेकर चलता है।
1: बिल्कुल अंजलि, आपने सही कहा। और जैसा कि हम नेल्सन मंडेला जी के बारे में बात कर रहे हैं तो श्रोता साथियों, नेल्सन मंडेला केवल दक्षिण अफ्रीका के नेता नहीं थे, वे पूरी दुनिया के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बन गए थे।
0: बिल्कुल।
1: उन्होंने गरीबी, भेदभाव, हिंसा और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने बच्चों की शिक्षा, महिलाओं के अधिकार और मानव गरिमा के लिए लगातार काम भी किए। उनका मानना था कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसके माध्यम से दुनिया को बदला जा सकता है।
0: जी जी।
1: उन्होंने युवाओं को हमेशा सकारात्मक सोच और सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के लिए भी प्रेरित किया। साथ ही अगर उनके पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो नेल्सन मंडेला को उनके योगदान के लिए बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त हुए। 1993 में उन्हें दक्षिण अफ्रीका के तत्कालीन राष्ट्रपति FW de Klerk को संयुक्त रूप से नोबेल पीस प्राइज प्रदान किया गया। इसके अलावा उन्हें दुनिया की कई देशों और संस्थानों द्वारा सम्मानित किया गया। विशांति, लोकतंत्र और मानवाधिकारों के वैश्विक प्रतीक बन गए।
0: बिल्कुल जागृति जी, आज दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है लेकिन भेदभाव, हिंसा, असहिष्णुता और सामाजिक असमानताएं जैसी जो चुनौतियां हैं वो अभी भी मौजूद हैं। ऐसे समय में मंडेला का जीवन हमें याद दिलाता है कि समाज तभी मजबूत बनता है जब हर व्यक्ति को समान अवसर मिलते हैं।
1: बिल्कुल।
0: यदि हम अपने परिवार, विद्यालय, कार्यस्थल और समाज में एक दूसरे का सम्मान करें, भेदभाव न करें और सहयोग की भावना रखें तो यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
1: बिल्कुल अंजलि, 5 दिसंबर 2013 को नेल्सन मंडेला जी का निधन हो गया। उनके निधन से पूरी दुनिया शोक में डूब गई लेकिन महान लोग केवल अपने शरीर से विदा होते हैं, उनके विचार सदैव जीवित रहते हैं। श्रोताओं,
0: बिल्कुल,
1: आज भी मंडेला जी के आदर्श करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। आज के युवाओं को नेल्सन मंडेला जी के जीवन से कई महत्वपूर्ण सीख मिलती है। पहली सीख ये है कि अन्याय के सामने कभी चुप नहीं रहना चाहिए। दूसरी सीख ये कि संघर्ष कितना भी कठिन क्यों न हो, धैर्य और साहस हमें हमेशा बनाए रखनी है। तीसरी सीख ये है श्रोता साथियों की सफलता मिलने पर भी हमें विनम्र बने रहना है। चौथी सीख ये है कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा और जागरूकता सबसे बड़ी प्रभावी साधन है। और सबसे बड़ी सीख ये है कि क्षमा और मानवता किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं।
0: बिल्कुल जागृति जी, आज आवश्यकता इस बात की है कि हम उनके विचारों को अपने जीवन में उतारें। यदि हम किसी के साथ भेदभाव न करें, शिक्षा का सम्मान करें, दूसरों के अधिकारों की रक्षा करें और समाज में प्रेम, सहयोग और भाईचारे का वातावरण बनाकर रखें, तो हम भी एक बेहतर समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। तो श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कार्यक्रम के अंत में कि महान लोग हमें रास्ता दिखा कर चलते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना हमारी ही जिम्मेदारी होती है।
1: बिल्कुल। तो जैसा कि अंजलि, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी बातें हो चुकी है और समय का मान रखते हुए विदा लेना होगा। विदा जरूर लेंगे, पर जाते जाते सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। बस यही कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि संघर्ष से जो न घबराए वही इतिहास बनाते हैं, मानवता का दीप जलाकर दुनिया को राह दिखाते हैं। इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ आपके साथ विदा लेते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि आज की जो भी बातें रही कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा में नेल्सन मंडेला जी के जीवन परिचय से आपको अवगत करवाया, वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को
1: नमस्कार।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनु, आ लक्षण आपने आपने मैं देखाए तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया ते की बचा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: भाई ने बोनो, आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ की छाव में आपड़े रह या आपड़े ने कितनी शांति मिले है। जीनी हवा में आपड़े हाल ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है।
1: होवे अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा।
0: प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
1: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
0: होवे आज नाना ना कदम है ई आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
1: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: सेहत नु राज हूँ है बोन,
1: असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की परबात नी शुरुआत पानी थकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने तात्काली नी जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड थकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह।
0: होवे सेहत है असली धन आपरो, आज जीवन नो सहारो है, आज थकी आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा।
1: होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आस है सेहत नु असली राज।
0: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट। स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम कथा कहानी में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आज वार रविवार का दिन है और आज ही के दिन में प्रेरणादायी शिक्षा प्रद कहानियों को लेकर हासिल होती हूँ। आज की कहानियाँ सुनाने का मकसद यही है कि आप इन कहानियों को सुनकर अपने जीवन में कुछ बदलाव लाएं, क्योंकि हमेशा कहा गया है ना कि कोई प्रेरणादायी बातें या कोई कहानी ही हमें हमारे जीवन को बदलने के लिए प्रेरित करती है। तो साथियों आज भी एक कहानी को लेकर हाजिर हूँ, लेकिन शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम कथा कहानी में आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम कथा कहानी में। और जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको कहा था कि आज वार रविवार का दिन है और आज ही के दिन में प्रेरणादायी शिक्षाप्रद कहानी को लेकर हाजिर होती हूँ। तो दोस्तों, आज जो कहानी सुनाने वाली हूँ उस कहानी का शीर्षक है एक बीज का सपना। जी हाँ दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि ये कहानी का शीर्षक ऐसा कैसा है, लेकिन दोस्तों ये कहानी बहुत अच्छी है। जब आप सुनेंगे तब आपको बहुत अच्छी लगेगी। जैसे कि कहानी शुरू होती इस तरह से कि गांव के बाहर एक विशाल मैदान था। वर्षों पहले वहाँ घना जंगल हुआ करता था। पेड़ों की छाया में पक्षी चहचहाते थे, जानवर स्वतंत्र होकर घूमते थे और आसपास के गांव में हरियाली की एक ठंडी हवा बहती थी। लेकिन समय के साथ पेड़ कटते गए और जंगल धीरे धीरे मैदान में बदल गए। अब वहाँ धूल उड़ती थी, गर्मियों में धरती तपती थी और बरसात का पानी भी अधिक देर तक नहीं रुकता था। उसी मैदान की सूखी मिट्टी में एक छोटा सा बीज पड़ा था दोस्तों। बहुत छोटा था, इतना छोटा कि किसी का ध्यान भी उस पर नहीं जाता था। लेकिन उसके मन में एक बड़ा सपना था। बीज सोचता था, एक दिन मैं भी एक विशाल वृक्ष बनूंगा। मेरी शाखाओं पर पक्षी घोंसले बनाएंगे, मेरी छाया में लोग विश्राम करेंगे और मेरे फल किसी की भूख मिटाएंगे। लेकिन जब वो अपने आसपास देखता तो उसे केवल सूखी धरती और तपती धूप दिखाई देती। कई बार दोस्तों उसे लगता कि उसका सपना शायद कभी पूरा नहीं होगा। एक दिन तेज हवा चली। हवा ने हंसते हुए कहा, अरे छोटे बीज, तुम इतने बड़े सपने क्यों देखते हो? देखो तुम्हारे आसपास कितने बीज पड़े हैं जो कभी अंकुरित ही नहीं हो पाए। श्रोता, बीज मुस्कुराया और बोला, सपने देखने में क्या बुराई है? अगर मैं कोशिश ही ना करूं तो कैसे जानूंगा कि मैं क्या बन सकता हूं? हवा आगे बढ़ गई, लेकिन बीज के शब्द उसके भीतर गूंजते रहे। साथियों, दिन बीतते गए, गर्मी बढ़ती गई, सूरज की किरणें धरती को झुलसा रही थी। कई बार बीज को लगा कि वो हार जाएगा, लेकिन उसने अपने सपनों को नहीं छोड़ा। एक शाम अचानक बादल घिराए, बिजली चमकी और तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश की बूंदे धरती में समाने लगी। बीज को पहली बार जीवन का एहसास हुआ। उसने मिट्टी के भीतर अपनी छोटी सी जड़ निकालने की कोशिश की, और ये भी आसान नहीं था। मिट्टी जो थी वो कठोर थी श्रोता साथियों। रास्ते में पत्थर थे, कई बार उसकी जड़ें रुक जाती थी, लेकिन हर बार वो फिर प्रयास करता। धीरे धीरे उसकी जड़ें गहरी होती गई और एक दिन मिट्टी को चीरकर उसका छोटा सा अंकुर बाहर निकल आया। जब उसने पहली बार दुनिया देखी तो उसे बहुत खुशी हुई, लेकिन संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ था। एक बकरी वहाँ आई और कई छोटे पौधों को खा गई। अंकुर डर गया, उसे लगा कि अब उसका जीवन भी समाप्त हो जाएगा, लेकिन सौभाग्य से वो बच गया। कुछ दिनों बाद कुछ बच्चे वहाँ खेलने आए। दौड़ते दौड़ते एक बच्चा उस पर पैर रखने ही वाला था कि दूसरे बच्चे ने उसे रोक लिया। कहा, सावधान, यहाँ एक छोटा पौधा उग रहा है, इसे मत कुचलो। उस दिन पौधे ने महसूस किया कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो दूसरों के सपनों की रक्षा करते हैं। साथियों, समय बीतता गया, पौधा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अब वो एक छोटा पेड़ का रूप ले चुका था, लेकिन नई चुनौतियाँ उसका इंतजार कर रही थी। कभी सूखा पड़ता, कभी आंधी आती, कई बार उसकी शाखाएं टूट जाती, कई बार उसे लगता कि आगे नहीं बढ़ पाएगा। एक दिन उसने पास खड़े एक पुराने वृक्ष से पूछा, दादाजी, क्या आपके जीवन में भी इतनी कठिनाई आई थी? पुराना वृक्ष मुस्कुराया, बोला, बेटा, हर बड़े वृक्ष की कहानी संघर्ष से ही शुरू होती है। जो आंधियों से डर जाते हैं वे कभी ऊंचाई छू ही नहीं पाते हैं। लेकिन जब मुश्किलें बहुत बड़ी लगती है तब क्या करना चाहिए? पौधे ने वृक्ष से पूछा। तब वृक्ष बोला, दोस्तों, अपनी जड़ों को मजबूत बनाओ। जिसकी जड़ें मजबूत होती है उसे कोई तूफान गिरा नहीं सकता। ये बात दोस्तों पौधे के मन में बैठ गई। उसने अपनी जड़ों को इतना गहरा करना शुरू कर दिया कि धीरे धीरे वो मजबूत होता गया। साल गुजरते गए, अब वो एक विशाल वृक्ष बन चुका था। उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थी। उसकी छाया में राहगीर आराम कर रहे थे, पक्षी घोंसले बनाते थे, बच्चे खेलते थे। एक दिन वही हवा फिर वहाँ आई जिसने कभी उसका मजाक उड़ाया था। हवा ने आश्चर्य से कहा, क्या तुम वही छोटा बीज हो? वृक्ष मुस्कुराया, हाँ, मैं वही छोटा बीज हूँ जिसने सपना देखना नहीं छोड़ा था। हवा ने कहा, मैंने सोचा था कि तुम कभी सफल ही नहीं हो पाओगे। वृक्ष बोला, सफलता उन लोगों को मिलती है जो परिस्थितियों से नहीं अपने संकल्प से जीवन जीते हैं। कुछ वर्षों बाद उस वृक्ष के फलों से नए बीज जमीन पर गिरे। उनसे एक छोटे बीज ने पूछा, दादाजी, क्या मैं भी आपके जैसा बन सकता हूँ? वृक्ष ने कहा, क्यों नहीं, लेकिन याद रखना,
बड़ा बनने का सपना देखने से पहले संघर्ष सहने का साहस भी रखना होगा। बीच ने कहा, अगर रास्ते में कठिनाई आई तो क्या करूँगा? तब वृक्ष बोला, कठिनाइयां ही तुम्हें मजबूत बनाएगी। यदि तुम हर चुनौतियों का सामना करते रहोगे तो एक दिन तुम भी लोगों को छाया दोगे, आशा दोगे और जीवन दोगे। ये सुनकर सभी बीजों के मन में नया उत्साह भर गया। दोस्तों, श्रोता साथ, यह कहानी हमें संदेश देती है, ये कहानी केवल एक बीज की नहीं है, ये हर उस युवा की कहानी है जिसके मन में कोई सपना होता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई शिक्षक बनना चाहता है, कोई वैज्ञानिक तो कोई खिलाड़ी, कोई उद्यमी और कोई समाज सेवी। शुरुआत में हर सपना हमें छोटा ही दिखाई देता है, ठीक उसी बीज की तरह जैसे लोग उसका मजाक उड़ा देते हैं। पर श्रोताओं, लोग मजाक भी उड़ाते हैं, परिस्थितियां हमें कठिन भी लगती हैं, संसाधन भी कम होते हैं और रास्ते में असफलताएं भी हमें मिलती हैं। लेकिन जो युवा अपने लक्ष्य पर विश्वास रखता है, निरंतर मेहनत करता है और हार नहीं मानता, वही एक दिन विशाल वृक्ष की तरह सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। इसलिए याद रखिए श्रोता साथियों कि हर विशाल वृक्ष कभी एक छोटा बीज था और हर बड़ी सफलता कभी एक छोटा सपना थी। तो आपसे इस कहानी के माध्यम से कहना चाहेंगे साथियों कि सपनों को पंख दो, मेहनत को आधार दो, बीज से वृक्ष बनेगा और यही है सफलता का द्वार। तो दोस्तों, ये थी कहानी। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको और भी बातें कुछ कहना चाहूंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।

दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम कथा कहानी में। और जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई थी और कहानी का शीर्षक था एक बीच का सपना। साथ ही प्रकृति हमें जीवन के बहुत सारे महत्वपूर्ण संदेश देती है। एक छोटा सा बीच भी हमें धैर्य, संघर्ष और सफलता का पाठ पढ़ाता है। देखने में साधारण लगने वाला बीज अपने भीतर एक विशाल वृक्ष बनने की क्षमता रखता है। और यही कारण है श्रोता साथियों कि एक बीज का सपना केवल प्रकृति की कहानी नहीं है, बल्कि हम मानव जीवन और विशेष रूप से हम युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जब एक बीज मिट्टी में बोया जाता है तब उसे अंधेरे में रहना पड़ता है। वो धूप, बारिश, हवा और बहुत सारी कठिन परिस्थितियों का सामना करता है। कई बार उसे मिट्टी को चीरकर बाहर निकलने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन दोस्तों वो हार नहीं मानता। धीरे धीरे वो अंकुरित होता है, पौधा बनता है और समय के साथ एक विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। ये परिवर्तन हमें बताता है कि सफलता प्राप्त करने के लिए धैर्य और निरंतर प्रयास बहुत जरूरी है। आज हम देखते हैं कि युवाओं के जीवन में बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। शिक्षा, रोजगार, प्रतियोगिता, सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। कई बार असफलता भी मिलती है, लेकिन श्रोता साथियों, हम आपसे इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगे कि असफलता अंत नहीं होती। जिस प्रकार बीज कठिनाइयों से लड़कर वृक्ष बनता है, उसी प्रकार युवा भी अपने आत्मविश्वास और परिश्रम के बल पर सफलता प्राप्त कर सकता है। एक वृक्ष बनने के बाद वही बीज समाज के लिए उपयोगी बन जाता है। वो छाया देता है, फल देता है, पक्षियों को आश्रय देता है और पर्यावरण को संतुलित रखने में सहायता करता है। इसी प्रकार दोस्तों, आपसे कहना चाहेंगे कि हम युवा जब अपने जीवन में सफल होते हैं तो हम केवल स्वयं का ही नहीं बल्कि परिवार, समाज और राष्ट्र का भी विकास कर सकते हैं। आज आवश्यकता इस बात की श्रोता साथियों कि युवा अपने भीतर छिपी क्षमताओं को पहचाने और अपने सपनों को साकार करने का संकल्प लें। हमें कठिनाइयों से घबराने के बजाय उनसे सीखना होगा। दृढ़ इच्छा शक्ति, सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास से सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। कहा गया है श्रोताओं कि छोटा बीज बड़ा विचार, मेहनत से मिलता है सम्मान अपार। इसीलिए दोस्तों, एक बीज का सपना हमें सिखाता है कि कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। यदि हमारे भीतर आत्मविश्वास है, धैर्य है, मेहनत की भावना है, तो हम जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए युवाओं को उस बीज की तरह अपने सपनों को संजोकर रखना होगा और उन्हें साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना होगा। यही सफलता और प्रगति का सच्चा मार्ग है। और दोस्तों, अंत में आपसे यही कहना चाहूंगी इस कहानी के माध्यम से, यदि आपके पास केवल एक छोटा सा सपना है तो निराश मत होइए। उस बीज की तरह धैर्य रखिए, संघर्ष की मिट्टी में मेहनत की जड़ें जमाइए और आत्मविश्वास की धूप में आगे बढ़ते रहिए। समय जरूर लगेगा, चुनौतियाँ भी आएंगी, लेकिन यदि हमारा संकल्प मजबूत है दोस्तों, तो एक दिन हम भी सफलता के इस विशाल वृक्ष में बदलेंगे, जिसकी छाया में न केवल हमारा जीवन बल्कि समाज का भविष्य भी सुरक्षित और समृद्ध होगा। इसलिए आपसे कहना चाहेंगे कि सपने देखिए, संघर्ष कीजिए और अपने जीवन को एक प्रेरणा बना दीजिए। इन्हीं उम्मीदों के साथ आज के इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहूंगी और उम्मीद करती हूँ कि आज जो भी कहानी सुनाई और जो भी बातें रही इस कार्यक्रम के माध्यम से, वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम कथा कहानी वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नई प्रेरणादायी शिक्षा प्रद कहानी के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपने साथी जागृति भट्ट को कार्यक्रम कथा कहानी से जाने की अनुमति। नमस्कार। साथ ही आप सभी को छोड़े चलती हूँ इस गीत के साथ में।

0: भूमि आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग ने प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बोन सशक्त थाए यस विकास नो सही रास्तो निकरे है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी दीदी मनीषा दीदी। आ गई हूँ बच्चों मैं बात नन्हे दिलों की को लेकर नई नई कहानियों के साथ में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में मैं जब भी हाजिर होती हूँ तो कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको प्रेरणादायक कहानियाँ सुनाती हूँ आपको, जो आपके जीवन में आपको नई नई सीख देते हैं। तो बच्चों आज भी कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही प्यारी कहानियों को लेकर मैं हाजिर हुई हूँ, तो ये कहानियाँ तो मैं आपको अवश्य सुनाऊंगी। लेकिन कार्यक्रम के दस्तूर को निभाते हुए सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में।

बच्चों, इस प्यारे से गीत के बाद में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ बात नन्ही दिलों की में। जैसा कि बच्चों मैंने गीत से पहले कहा था कि मैं बहुत ही प्यारी कहानियों को लेकर हाजिर हुई हूँ। आज हमारी पहली कहानी है छोटा बीज बड़ा सपना। जी हाँ बच्चों, एक छोटे से गाँव में जहाँ चारों ओर हरियाली थी वह एक विशाल खेत था। उस खेत में कई तरह के पेड़ पौधे उगते थे। उसी खेत में एक दिन एक किसान ने कुछ बीजों को बोए। उन बीजों में एक छोटा सा बीज था। बच्चों वह बीज बहुत छोटा था, इतना छोटा कि बाकी बीज देखकर उसे हंसते थे। एक दिन बड़े बीज ने कहा, तुम इतने छोटे हो, तुमसे क्या होगा। छोटा बीज थोड़ा उदास हुआ, लेकिन उसने धीरे से कहा, मैं छोटा जरूर हूँ लेकिन मेरा सपना बड़ा है। बाकी बीज फिर हंसने लगे। बच्चों कुछ दिनों बाद बारिश हुई, मिट्टी गीली हो गई, सभी बीज अंकुरित होने लगे। लेकिन छोटे बीज के सामने कई मुश्किलें थीं। मिट्टी बहुत सख्त थी, ऊपर पत्थर था, सूरज की रोशनी कम मिल रही थी। उसने सोचा, शायद मैं कभी बाहर नहीं आ पाऊंगा। फिर उसे अपनी बात याद आ गई, मेरा सपना तो बड़ा है। फिर उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। बच्चों दिन बीतते गए, बाकी पौधे जल्दी जल्दी ऊपर आ गए। वे सूरज की रोशनी में नहा रहे थे, छोटा बीज अभी भी मिट्टी के अंदर ही था। एक दिन उसने पूरी ताकत लगाई, धीरे धीरे और आखिरकार वह मिट्टी को चीर कर बाहर आ गया। वह बहुत छोटा पौधा था। दूसरे पौधे बोले, इतनी देर से आए हो, तुम कभी बड़े नहीं बन पाओगे। छोटे पौधे ने मुस्कुराकर कहा, देखते हैं। अब रोज एक नया संघर्ष शुरू हुआ। बच्चों तेज धूप, ठंडी हवा, कभी बारिश ज्यादा कभी कम, लेकिन वह पौधा रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहा। वह खुद से कहता, आज थोड़ा और मजबूत बनूंगा। धीरे धीरे उसकी जड़ें गहरी होने लगी। एक दिन एक छोटी चिड़िया आई। उसने उस पौधे को देखा। चिड़िया बोली, तुम अभी छोटे हो लेकिन तुम में कुछ खास है। पौधा खुश हो गया। चिड़िया रोज उसके पास आने लगी। वह उसे हौसला देती, जब तेज हवा चली तो झुक जाना, टूटना नहीं। जब धूप तेज हो तो सहना, हारना नहीं। पौधे ने ये सब बातें याद रखी। कुछ महीनों बाद जो पौधे पहले हंसते थे उनमें से कई सूखने लगे, क्योंकि उनकी जड़ें गहरी नहीं थी। लेकिन छोटा पौधा अब मजबूत हो चुका था। उसकी जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक चली गई थी। एक दिन उस पौधे पर एक छोटा सा फूल खिला। वह बहुत सुंदर था। चिड़िया बोली, देखो तुम्हारी मेहनत रंग लाई। पौधा खुश हो गया। अब लोग भी उसे देखने लगे। साल बीतते गए। वो छोटा पौधा अब एक बड़ा पेड़ बन चुका था। उसकी शाखाएं फैल गई थीं। उसकी छाया में लोग बैठते थे, पक्षी उसमें घर बनाते थे। एक दिन वही पुराने पौधे जो अब छोटे पेड़ थे बोले, हमने तुम्हें कम समझा। पेड़ मुस्कुराया और बोला, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, मेहनत और हिम्मत ही इंसान को बड़ा बनाती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें कई बातें सीखने को मिलती हैं, जैसे कि कभी हमें खुद को छोटा नहीं समझना चाहिए। आप चाहे कितने भी छोटे क्यों न हो, आपके सपने बड़े हो सकते हैं। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता बच्चों, जो मेहनत करता है वही आगे बढ़ता है। बच्चों धैर्य भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। जल्दी हार मानने से कुछ नहीं मिलता, इसीलिए बच्चों हमें हमेशा धैर्य बनाकर रखना चाहिए। साथ ही बच्चों, जो मुश्किलें हमारे सामने आती है वो हमें मजबूत बनाती है, इसलिए हमें हर समस्याओं का सामना करना चाहिए, क्योंकि हर समस्या हमें कुछ सिखाती है। इसी के साथ बच्चों, हमें अच्छे दोस्त बनाने चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में अच्छे दोस्त बहुत जरूरी होते हैं। जैसे कि चिड़िया ने पौधे को हिम्मत दी, इसे ही हमारे जीवन में भी जो हमारे दोस्त होते हैं जो हमें हिम्मत देते हैं, तो हमें हमारे जीवन में अच्छे दोस्त बनाने चाहिए। तो बच्चों, अब वह पेड़ हर साल नए बीज देता था। एक दिन एक छोटा बीज उससे बोला, मैं भी बड़ा बनना चाहता हूँ लेकिन मैं छोटा हूँ। पेड़ मुस्कुराया और बोला, मैं भी कभी तुम्हारी तरह था। और फिर उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। छोटा बीज अब डर नहीं रहा था, उसने भी सपना देखा, मैं भी एक दिन बड़ा बनूंगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सपने बड़े रखो, मेहनत करते रहो और कभी हार मत मानो। छोटा होना हमारी कमजोरी नहीं है, यह तो हमारी शुरुआत होती है। जो खुद पर विश्वास रखता है बच्चों, वही सफल होता है। आशा करती हूँ कि बच्चों ये कहानी आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। आगे भी मैं आपको एक और प्यारी सी कहानी सुनाऊंगी, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।

0: बच्चों इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम बात नन्ही दिलों की ओर। जैसा कि बच्चों मैंने गीत से पहले आपको एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनाई थी, अब यही हम एक और प्यारी सी कहानी सुनने जा रहे हैं जिसका नाम है गिलहरे की हिम्मत। जी हाँ बच्चों, एक हरे भरे जंगल में एक चंचल नाम की एक छोटी सी गिलहरी रहती थी। वह बहुत ही फुर्तीली थी लेकिन दिल से थोड़ी डरपोक थी। उसे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ना बहुत अच्छा लगता था, पर जब भी कोई नया काम उसके सामने आता तब वह घबरा जाती। एक दिन बच्चों जंगल में तेज आंधी आई, कई पेड़ की टहनियां टूट गई और पक्षियों के घोंसले नीचे गिर गईं। छोटे छोटे पक्षी डर कर इधर उधर छिप गईं। पूरा जंगल परेशान था। चंचल ने ये सब देखा तो उसका मन दुखी हो गया। वह सोचने लगी, मैं तो एक छोटी सी गिलहरी हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। तभी उसकी दादी गिलहरी ने कहा, बेटी छोटा होना कमजोरी नहीं है, अगर दिल बड़ा हो तो काम भी बड़े हो जाते हैं। चंचल ने हिम्मत की, उसने पेड़ों से सूखी टहनियां इकट्ठी करनी शुरू की। वो एक एक करके टहनियां लाती और पक्षियों के पास रखती। धीरे धीरे और भी जानवर उसकी मदद करने लगे। बंदर ऊपर चढ़कर घोंसले ठीक करने लगे, हाथी ने गिरे पेड़ों को रास्ते से हटाया और हिरण बच्चों को सुरक्षित जगह ले गया। कुछ ही दिनों बाद जंगल फिर से पहले जैसा सुंदर हो गया। पक्षियों ने चंचल को धन्यवाद दिया। एक छोटे से पक्षी ने कहा, अगर तुम हिम्मत न करती तो हम सब उदास रहते। चंचल को समझ आ गया कि डरना बुरा नहीं है लेकिन डर के कारण रुक जाना गलत है। उस दिन के बाद उसने हर नए काम को आत्मविश्वास के साथ करना शुरू कर दिया। शाम को जब ठंडी हवा चल रही थी तो दादी ने मुस्कुरा कर कहा, देखा असली ताकत शरीर से नहीं मन में होती है। चंचल खुशी से अपनी पूंछ हिलाने लगी। अब वह सिर्फ फुर्तीली ही नहीं बहादुर भी बन चुकी थी। तो बच्चों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हिम्मत करने वाले छोटे भी बड़ा काम कर सकते हैं। एक ही पल में सब मिलकर काम करने लगते हैं तो डर को भी हराकर आत्मविश्वास आता है। आशा करती हूँ कि बच्चों आपको ये प्यारी सी कहानियाँ जरूर पसंद आई होंगी। अब समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा तो जरूर लूंगी लेकिन जाने से पहले करते ही मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में फागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जुमा रहा तोड़ा।

बच्चों, इस प्यारे से गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की से हम विदा लेते हैं। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो बच्चों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी मनीषा पटेल को कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ में बाय बाय बच्चों।

0: भाई ने बोलो आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ ने छाव में आपड़े रह हां या आपड़े ने कितनी शांति मिले है जीनी हवा में आपड़े हाल हां ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है होवे अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा प्रकृति आपड़ी जरूरत नती बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है एक पेड़ लगाड़ंगा पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा
1: होवे प्रकृति ने बचावो भविष्य ने हदारो
0: होवे आज नाना कदम है ई आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है
1: वागड़ रेडियो वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

साथियों, खुद की काबिलियत पर भरोसा रखो। जो गलती आज की है उससे कुछ सीखो। मत मांगो किसी के आगे अपनी सफलता के लिए भीख। हम खुद जला हुआ रेगिस्तान है, अपने अंदर कुछ करने की हमें ठाननी है। हमें रुकना नहीं है, कुछ महान करना है। हम अपने घर वालों की आस है, उनकी उम्मीदों की सांस है। इसको यूं ही नहीं जाया करना है, हमें अपनी सफलता के लिए आगे आना है।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम हमारे मेहमान में। मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर। स्वीकार करिएगा मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम हमारे मेहमान में हम हर रविवार को कार्यक्रम के माध्यम से एक नए शख्सियत को जोड़ते हैं, उनकी कुछ जीवन के अनुभवों को जानते हैं कि किस तरीके से जीवन में मुश्किलें आती और जाती रहती हैं, लेकिन अगर हम मन की इच्छा शक्ति से किसी कार्य को करते हैं तो वो अवश्य ही पूरा होता है। तो श्रोता साथियों, आज भी हमारे कार्यक्रम में हमारे विशेष अतिथि जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं उनके जीवन की जुड़ी हुई कुछ बातों को। मैम नमस्कार।
1: नमस्ते
0: मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं वाग रेडियो परिवार में।
1: शुक्रिया।
0: जैसा कि मैम आप हमारे कार्यक्रम हमारे मेहमान से जुड़ रहे हैं और हमारे सभी श्रोता साथी जानते हैं कि कार्यक्रम हमारे मेहमान में हम हर रविवार को कार्यक्रम के माध्यम से एक शख्सियत जोड़ते हैं, तो मैम आज भी आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपका परिचय जानना चाहूंगी।
1: मेरा नाम विशाला है, मैं बैंगलोर से आई हूँ और एक NGO है PGS ऑर्गेनिक काउंसिल करके, जिसकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ मैं।
0: जी बिल्कुल। तो मैम जैसा कि आपने आपका परिचय हमें बताया, तो सबसे पहले तो मैं कार्यक्रम के माध्यम से आपके बचपन के बारे में जानना चाहूंगी कि आपका बचपन कैसे बीता, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सबका बचपन अलग अलग होता है। किसी के बचपन में कुछ अभाव होते हैं तो किसी के बचपन में पर्याप्त सुविधाएं होती हैं। तो ऐसे में अगर हमारे जीवन में कुछ भी कमी रह जाती है बचपन के समय में, तो किस तरीके से हम उससे निकलकर आगे चलकर अपने जीवन को बदल सकते हैं, तो सबसे पहले मैं आपके बचपन के बारे में जानूंगी।
1: मैं पैदा हुई थी बैंगलोर में ही, क्योंकि मेरी मम्मी बैंगलोर से थी तो मैं पैदा वहीं पे हुई थी, और मेरा बचपन भी ज्यादातर बैंगलोर में ही था। जब तक मैं 12th स्टैंडर्ड तक थी, तो बैंगलोर में जो कैंटोनमेंट की एरिया है वहाँ हुई थी मेरी स्कूलिंग, और जो भी मैंने सीखा था प्राइमरी एजुकेशन, और मेरे फैमिली, मेरे एक्सटेंडेड फैमिली, तो हमारा तो बहुत बड़ा परिवार था, बहुत सारे चाचा चाची सब साथ में रहते थे। तो बचपन में तो वैसे अभी बोलूं तो बहुत अच्छा रहा हमारा बचपन, क्योंकि तब का बैंगलोर भी बहुत छोटा टाउन जैसा था, हर किसी को हम जानते थे और पास के स्कूल में जाते थे। इतना शानदार स्कूल नहीं है, बहुत बड़ा सा इंग्लिश मीडियम वो सब नहीं था, फिर भी जो बेसिक हमें एजुकेशन मिला, बहुत प्यार मिला टीचर से और बहुत एनकरेजमेंट मिला।
0: जी जी बिल्कुल।
1: और मुझे भी बहुत अपॉर्चुनिटीज मिले कि मेरे जो भी स्किल्स है, कुछ मुझे पेंटिंग करने में अच्छा लगता था और स्पोर्ट्स अच्छे लगते थे, तो मुझे भी वहाँ बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिले।
0: जी बिल्कुल मैम, जैसा कि आपने बताया कि आपका जो बचपन है वो बहुत अच्छे से बीता, जैसा कि आपने बताया कि आपकी जो पढ़ाई है वो बेंगलोर में ही रही थी, तो मैम अब मैं आपके शिक्षा के क्षेत्र के बारे में जानना चाहूंगी कि आपके जो शिक्षा का सफर था वो कैसा रहा।
1: तो मैंने स्कूल और कॉलेज के 12th के बाद, मेरा बहुत इंटरेस्ट था कंजर्वेशन में, वाइल्ड लाइफ में, तो इंटरेस्ट तो बहुत ज्यादा था तब, ये मैं कुछ 30 साल के पहले की बात कर रही हूँ। तो तब क्या था कि वाइल्ड लाइफ में बहुत अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं थे, फिर भी मैंने आगे जाके बॉटनी और जुआलॉजी में ग्रेजुएशन किया था, BSc किया था, इसी उम्मीद में कि कुछ वाइल्ड लाइफ में कर पाऊंगी और कंजर्वेशन में रहूंगी, क्योंकि हमारे जो सिटी के पास एक जंगल है बनरगट्टा नेशनल पार्क में, उस पर मुझे बहुत लगाव था, बहुत अच्छा लगता था वो जगह।
0: जी जी।
1: एक बार स्कूल से हम ट्रिप गए थे तो बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगा कि वाइल्ड लाइफ और ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन में मुझे काम करना है।
0: जी जी।
1: तो मैंने BSc तो कर दिया, पर बाद में मुझे थोड़ा समझ में आया कि, क्योंकि मेरे पे थोड़ा बहुत तो इकोनॉमिक प्रेशर भी था, मेरी तो डिग्री के बाद ही जल्दी शादी हो गई थी।
0: जी जी।
1: एंड एक फाइनेंशियल प्रेशर बहुत था, तो मुझे अच्छा खासा काम नहीं मिल रहा था।
0: जी बिल्कुल।
1: तो इसीलिए मुझे ग्रेजुएशन के बाद में मुझे थोड़ा बहुत जो मेरा ड्रीम था कि मैं फॉरेस्ट्री और वाइल्ड लाइफ पे काम करूं, थोड़ा उससे बियॉन्ड सोचना पड़ा। कुछ छोटे मोटे जॉब्स लिया था मैंने, कुछ स्मॉलर कंपनी से, और एक 2 साल के बाद मेरी एक मुलाकात हुई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से, उनके ऑफिस में काम कर रही थी मैं।
0: जी जी।
1: तब वो बहुत एनकरेज कर रहे थे, बोल रहे थे कि तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम CA कर सकती हो और CA करने से तुम पैसा कमा सकती हो।
0: जी बिल्कुल।
1: मुझे वैसे तो मुझे कॉमर्स में कुछ ऐसा खास इंटरेस्ट नहीं था, पर उनके ऑफिस में काम तो अच्छा लगता था, तो मैंने सोचा कि अच्छा एग्जाम ही लिखना है तो थोड़ा ट्राई भी कर लेती हूँ। मुझे खुद पे तो भरोसा नहीं था कि मैं कुछ, जो इंटरेस्ट मेरा साइंस था, तो मुझे कुछ खुद पे भरोसा नहीं था कि मैं CA कर पाऊंगी, और सब लोग बोल भी रहे थे कि CA बहुत मुश्किल कोर्स है, एग्जाम्स पास करना बहुत मुश्किल है, पर उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और घर में भी पेरेंट्स ने बहुत एनकरेज किया, बोल रहे थे कि करो ट्राई करो। तो मैंने एक 2 साल का ट्रायल पीरियड खुद को दिया और मैंने एग्जाम्स पास भी कर लिया
0: जी जी
1: एंड देन आई बिकेम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट
0: जी बिल्कुल। तो जैसा कि मैम आपने आपकी शिक्षा के सफर के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हमारे श्रोता साथियों को दी है, लेकिन जैसा कि मैम आपने बीच में कहा कि आपकी ग्रेजुएशन के बाद ही शादी हो गई थी, तो मैं जानना चाहूंगी कि शादी के बाद जो करियर की चीजें हैं उन्हें सफल बनाना हमारे लिए किस तरीके से मुमकिन हो सकता है, क्योंकि बहुत सी महिलाएं जो हैं वो शादी के बाद ये सोचती हैं कि हमें घर का काम, परिवार, बच्चे, इन सबको संभालने के चक्कर में खुद का जो करियर है वो बंद कर देती हैं। तो ऐसे में उन बहनों को आप क्या कहना चाहेंगी?
1: मेरे ख्याल से अगर आपकी, क्योंकि शादी तो हमारे यहाँ इंडिया में अभी परिवार परिवार के साथ होती है
0: जी बिल्कुल,
1: तो सपोर्ट सिस्टम ज्यादा चाहिए थोड़ा, ये सिर्फ दो लोगों के बीच की बात नहीं है। तो मुझे तो सपोर्ट सिस्टम मिला, फॉर्चुनेटली मुझे बहुत सपोर्ट सिस्टम मिला तो मैं कर पाई। तो
0: जी जी
1: अभी भी मैं बोलूंगी कि इंडिविजुअल एफर्ट्स एक तरफ है, हाँ खुद को, लेडीज को भी, विमेन को भी बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए और एक तो गोल या विल पावर तो होना चाहिए
0: जी
1: कि
0: जी
1: कुछ करना है मुझे और मुझे इंडिपेंडेंट रहना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना है और मुझे कुछ पर्पस है जिसके तरफ मैं काम करना चाहती हूँ
0: जी बिल्कुल।
1: उस विल को अगर फैमिली से भी सपोर्ट मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है। और जैसे मेरे केस में हुआ, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने मुझे एनकरेज किया
0: जी जी बिल्कुल।
1: तो मुझे लगता है कि दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है, खुद की जो विल पावर होती है और खुद की जो इच्छा होती है कि कुछ करना, प्लस वो जो इकोसिस्टम सपोर्ट, जो लोगों से रिलेशनशिप और सपोर्ट है, वो दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है
0: जी बिल्कुल। मैम आपने सही कहा, तभी हम हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को अधिकतर यही कहा करते हैं कि जिन व्यक्तियों से हम प्रेरणा ले सकते हैं हमें लेते रहना चाहिए। हम देखते हैं कि हम बच्चों से, हमारे जो जीव जंतु होते हैं उनसे भी जीवन में प्रेरणा ले सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमारे जीवन में हमारे लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो जैसा कि मैम आपके माध्यम से हम ढेर सारी बातों को जान रहे हैं और जैसा कि मैम आपने बताया था कि आप एक एनजीओ भी चला रहे हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि एनजीओ के माध्यम से आप किस तरीके से आपका जो गोल था उसे पूरा कर पा रहे हैं?
1: तो पहले तो मेरा सीए करना पड़ा मुझे कुछ इनकम, डिसेंट इनकम कमाने के लिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए। तो मैंने तो 5 साल कॉर्पोरेट में काम किया, बाद में कंसल्टेंसी किया मैंने कुछ साल के लिए
0: जी जी।
1: पर बाद में मुझे, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही था वाइल्ड लाइफ और इसमें कंजर्वेशन में, तो मुझे ये तो लगता था कि जब भी हो सके तो मैं वापस आऊंगी यहाँ काम करूंगी
0: जी जी।
1: तो वो तो मन में था ही एंड 10 साल के जो प्रोफेशनल जर्नी के बाद मैंने डिसाइड किया कि जो मुझे, क्योंकि तब तक तो थोड़ा बहुत फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी हो गई थी, तो मुझे लगा कि मुझे अभी थोड़ा लोगों के साथ काम करना है, सोशल इम्पैक्ट करना है मुझे। और ये भी था कि 10 साल की जो एक्सपीरियंस और मेरे जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी मुझे इतना सारा एक्सपीरियंस दिया, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस दिया, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कि मैं एनजीओ सेक्टर में कुछ कर पाऊंगी
0: जी जी बिल्कुल,
1: एज ए डेवलपमेंट प्रोफेशनल। तो मैं ट्राई कर रही थी कि ज्यादातर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ पे करें और मुझे एग्रीकल्चर में भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था, तो मैंने उसमें थोड़े मुझे अपॉर्चुनिटीज मिले। तो मैं, हमारा जो अभी संस्था है पीजीएस ऑर्गेनिक काउंसिल, वो एक ऑल इंडिया कोएलिशन ऑफ एनजीओस है, उसमें
0: जी बिल्कुल
1: 35-40 एनजीओस मेंबर्स है उसमें, और हम एडवोकेसी और पॉलिसी रिलेटेड काम करते हैं और ग्रास रूट पे भी काम करते हैं
0: जी बिल्कुल।
1: तो इसमें मुझे अभी यहाँ मैं 20 साल से कर रही हूँ एनजीओ सेक्टर में, और पिछले 10 साल से तो फुल टाइम डेवलपमेंट प्रोफेशनल हूँ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। तो मुझे यहाँ से, मुझे लगता है कि आज मैं जिस सेक्टर में हूँ, पैसे अलग सी बात है, पर जितना मुझे पर्पस और फुलफिलमेंट हो रही है और जितना मुझे लगता है कि मुझे जो मिला जीवन से, जैसे कि सपोर्ट फ्रॉम एजुकेशन, फैमिली से
0: जी जी,
1: उसको गिफ्ट मानती हूँ
0: जी बिल्कुल,
1: और उसको मैं शेयर कर पा रही हूँ बहुत सारे लोगों से, तो वो सेटिस्फेक्शन अभी मुझे मिल रहा है इस सेक्टर
0: जी बिल्कुल। मैम आपने बहुत सही कहा, क्योंकि हम देखते हैं कि जीवन में घर परिवार का सपोर्ट रहे और उनके द्वारा अगर हम लाइफ में कुछ अच्छा कर पाए तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार ही होता है। तो मैम जैसा कि कार्यक्रम में बातें बहुत अच्छी चल रही है, हम आपके जीवन के अनुभवों को जान पा रहे हैं, तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपके जीवन की कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई जब आप निराश और हताश हुए और आप वहां से बाहर निकले?
1: डेफिनेटली अभी अभी हुआ कोविड के टाइम पे, सेकेंड वेव ऑफ कोविड में मेरे पिताजी गुजर गए, उसकी जो, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हुई बैंगलोर में और उनका एज भी थोड़ा ज्यादा था, पर उनको जब हम हॉस्पिटलाइज किया तो उसमें एक तरफ ये था कि वो गुजर गए एक तरफ था, पर जहां मैं बैठी थी हॉस्पिटल में बैठी थी वो बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था, क्योंकि बहुत रोज बहुत सारे लोगों की बहुत सारी हालत खराब होती थी, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हो रही थी
0: जी जी,
1: तो उसमें तो मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हुई क्योंकि जो मैं देख रही थी वहाँ की जो इश्यूज लोगों की, क्योंकि कुछ लोगों को हॉस्पिटल की बिल भरने के भी पैसे नहीं थे
0: जी बिल्कुल,
1: तो इतना प्रॉब्लम्स था, इतना डिफिकल्टीज दिखाई दे रहा था, तो मुझे बहुत दिन लगा, मुझे तो 5-6 महीने लगा उस सदमे से बाहर आने के लिए
0: जी बिल्कुल,
1: तो दैट आई वुड से वाज सबसे बड़ा ट्रॉमा तो मेरे लिए वही था
0: जी बिल्कुल। मैम आपने बहुत सही कहा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी की वजह से किस तरीके से लोगों की हालत खराब हुई, बहुत सारे लोगों को जहां वो जॉब करते थे वो छोड़कर आना पड़ा, बहुत सारी स्थिति गंभीर थी। तो जैसा कि मैम आपने बहुत अच्छी बातों से हमारे श्रोता साथियों को अवगत करवाया है, तो अंत में आप हमारे श्रोता साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: संदेश तो हाँ, हमारे ही जीवन एक्सपीरियंस से आती है, तो मुझे जितना भी मैं वही जैसे मैं बोल रही थी, जितना भी मुझे पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिला, सपोर्ट मिला, वो सबको मैं ब्लेसिंग यानी कि वो गिफ्ट मानती हूँ। तो उसमें हमें थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है, क्योंकि जैसे आप आज के जो सिस्टम में रहते हैं हम, जो लार्जर इकोसिस्टम है
0: जी जी,
1: उसमें हम देखते हैं कि गरीबी भी है और बहुत अमीरी भी है और उसकी डिवाइड भी बहुत ज्यादा होती जा रही थी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम सबकी एक रोल होती है उसमें, थोड़ा बहुत हम इक्वालिटी पे थोड़ा कॉन्शियस रहे, अवेयर रहे उसके बारे में, और जहां भी है, हम गांव में है या शहर में है, छोटे शहर में है, बहुत छोटे से गांव में है, अगर हम इतना समझे कि आई मीन एंड ऑफ द डे हम सब साथ में है
0: जी बिल्कुल,
1: जो भी आज के प्रॉब्लम बड़े बड़े इश्यूज है, चैलेंजेस है, क्लाइमेट चेंज हो या जैसे कोरोना जैसे पैंडेमिक हो
0: जी जी,
1: तो बात एक ही बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हम सब साथ में हो
0: जी बिल्कुल,
1: और उसको पार करना और भी आसान होगा
0: जी बिल्कुल मैम।
1: तो यही मुझे जो भी डाउनफॉल्स भी हुए मेरे लाइफ से, मुझे तो यही सीखना मिला कि आई मीन एंड ऑफ द डे ह्यूमैनिटी जो हम बोलते हैं उसको, दैट हैज टू सर्वाइव
0: जी बिल्कुल मैम, आपने सही कहा। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
1: थैंक यू, धन्यवाद।
0: साथियों जैसा कि अभी हमारे बीच में मुख्य अतिथि जुड़े हुए थे और उनके जीवन से हमने ढेर सारी बातों को जाना कि किस तरीके से शुरुआत में हम जो सपने देखते हैं वो पूरे होते हमें दिखाई नहीं देते हैं, तो हम किसी और राह पर चले जाते हैं, फिर उस राह से हम किस तरीके से वापस हमने जो सपना देखा था उसे कैसे पूरा कर सकते हैं, ये जो बात है वो हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। और साथ ही हम उनके माध्यम से ये भी जान पाए कि किस तरीके से एक महिला विवाह के पश्चात भी अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को बरकरार रख सकती है, अपने सपनों को पूरा कर सकती है। तो श्रोता साथियों आशा करते हैं कि आज जो हमारे बीच में अतिथि जुड़े हुए थे उनके जीवन से जुड़ी हुई जो बातें रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले करते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

साथियों, इस गीत के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम हमारे मेहमान से हम विदा लेते हैं और आशा करते हैं कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। इसी के साथ श्रोता साथियों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vaagdha.org, radio@vaagdha.org। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी अगले रविवार को कार्यक्रम हमारे मेहमान में एक नई शख्सियत के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपनी साथी अंजलि पाराशर को कार्यक्रम से जाने की। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: जागृति बूंद, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ थाय
1: नाना अंजलि बूंद हूँ था का
0: अरे जागृति बूंद आपड़ी जे नदी है ये हुकी जाएंगा खेतर बंजर थी जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बूंद एटले मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बूंद, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बूंद, आपड़े भाई बूंद थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बूंद, आपड़े भाई बूंदो ने कहो कि पानी बचावो, पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: एवो केवाय जैविरे एक बैरू मजबूत बने हैं, तैविरे पूरो परिवार मजबूत बने हैं, पर मजबूती खाली

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में। जैसा कि दोस्तों पिछले रविवार को कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में हमारी बातें चल रही थी सबके गांधी रचनात्मक कार्यक्रम के बारे में।
1: बिल्कुल,
0: अगर आज इसी कार्यक्रम के माध्यम से इस बातचीत को हम आगे बढ़ाएं अंजलि जी, तो बताया जाता है कि समाज में भेदभाव पैदा करने वाला दूसरा बड़ा तत्व था कौमी भेदभाव। साथियों, गांधी जी ने अपने प्राणों को जोखिम में डालकर भी इसका सतत विरोध किया था।
1: बिल्कुल,
0: यह बात हर कोई जानता है। अंजलि जी, हमारे समाज में विद्यमान भेदभावों को बढ़ाने वाले तत्वों और इन तत्वों को समर्थन देकर अपनी राजनीति चलाने वाली सरकार ने इन भेदभावों का पोषण किया। हमारे समाज में अलग अलग सांप्रदायिक तत्वों ने स्वराज के पूर्व और बाद में भी कौमी भेदभाव के विष को सतत योजना पूर्वक बढ़ाया है। इससे राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयत्न किया है। एक सुस्वादी समाज बनाने में बाधक बनने वाला ये सबसे बड़ा तत्व रहा है।
1: जी जी,
0: गांधी जी ने आदिवासियों की सेवा के काम को रचनात्मक कार्यक्रम में स्थान देकर देश की भीतरी सुसंवादिता को करने एक दूसरा मार्ग बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस तरह की तमाम सेवाएं सिर्फ मानवता प्रेरित नहीं बल्कि संगीन राष्ट्र सेवाएं हैं और सच्चे अर्थ में अहिंसक समाज रचना की दिशा में किया जाने वाला एक काम है।
1: बिल्कुल,
0: स्वयं गांधी जी साथियों पूरे देश के आदिवासियों की दशा से इतने परिचित नहीं थे जितने उनके एक आजीवन साथी ठक्कर बापा थे। ठक्कर बापा द्वारा आदिम जाति सेवा संघ के माध्यम से उठाए गए काम को गांधी जी ने समर्थन दिया था।
1: बिल्कुल,
0: वहीं कांग्रेस संस्था का इस तरफ ध्यान खींचा था कि यह काम मानवता का तो है ही पर राष्ट्र की एकात्मकता के लिए भी उतना ही जरूरी है।
2: बिल्कुल कशिश, गांधी जी भली भांति जानते थे कि किसी भी समाज का मेरुदंड उसके नागरिकों का शिक्षण होता है। लंबे अनुभव के अंत में उन्होंने अपने सपने के अहिंसक समाज के लिए एक शिक्षण व्यवस्था की कल्पना की थी।
0: बिल्कुल,
2: वर्षों तक उसे अजमा कर देखा था। रचनात्मक कार्यों में भी उन्होंने शिक्षण को महत्वपूर्ण स्थान दिया था। समाज के शैक्षणिक पहलू में गांधी जी ने जन्म से मृत्यु तक की नई तालीम, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, स्वास्थ्य शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा इतने कार्यक्रमों को स्थान दिया था।
0: बिल्कुल,
2: गांधी जी ने दक्षिणी अफ्रीका में अपने बालकों की शिक्षा के सवाल से शिक्षण के क्षेत्र में रुचि लेनी शुरू की थी। फिनिक्स आश्रम और टॉलस्टॉय आश्रम में कशिश उन्होंने शिक्षण के बारे में गहरा चिंतन किया था।
0: बिल्कुल,
2: साबरमती में उन्होंने आश्रमी शाला चलाई थी। कांग्रेस ने जब विद्यालयों महाविद्यालयों के बहिष्कार की घोषणा की थी तब देश भर में स्थान स्थान पर उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा देश वाले विद्यापीठ खोले थे।
0: बिल्कुल,
2: अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ की स्थापना गांधी जी ने खुद की थी। 1927 में श्रोता साथियों जब देश में प्रांतीय स्वराज आया तब गांधी जी ने वर्धा में शिक्षण में रुचि लेने वाले लोगों का एक सम्मेलन बुलाया था। उसमें शिक्षण विषयक अपनी कल्पना प्रस्तुत की थी। 1935 में हरिपुर की महासभा के समय कांग्रेस ने शिक्षा के संबंध में गांधी जी के मूल विचार को स्वीकार करके उसे गति देने हेतु हिंदुस्तानी तालीम संघ नामक संस्था स्थापित की थी।
0: बिल्कुल,
2: प्रांतीय सरकारों के अमल के दरमियान अनेक राज्यों की सरकारों ने अपने प्रांत के शिक्षा विभाग में नई तालीम की कल्पना को स्वीकार करके उसे क्रियान्वित करना शुरू किया था।
0: जी हाँ अंजलि जी, साथियों नई तालीम की मूल कल्पना ये थी कि बालक का शिक्षण उसके जीवन के साथ जुड़ा होना चाहिए। वह शिक्षण बालकों के शरीर मन और आत्मा तीनों के विकास हेतु होना चाहिए। अंजलि जी,
1: जी जी,
0: साथ ही गांधी जी को यह विश्वास था कि प्रत्येक बालक में अपार शक्तियाँ और संभावनाएं विद्यमान रहती है। शिक्षण का काम इन शक्तियों को बाहर लाने का है। शिक्षण यानी कि मात्र सूचनाएं ही नहीं बल्कि ज्ञान को पचाना। दोस्तों, आजकल के शिक्षण में बालक लिखने के लिए अपने तीन उंगलियों को काम में लेता है।
1: बिल्कुल,
0: यदि बालक प्रत्येक काम का लाभ ले तो उसे 200 उंगलियां काम में लेने का लाभ मिलेगा। बालक जिस घर गांव या समाज में बड़ा होता है उसके साथ में प्रत्येक व्यवहार भी उसे शिक्षण देने वाले होते हैं। जिस विशाल प्रकृति के बीच वह बड़ा होता है वह तो उसे प्रतिक्षण शिक्षण देने में समर्थ है। अतः नई तालीम ने उद्योग समाज और प्रकृति को शिक्षण के बड़े माध्यम माने हैं।
1: बिल्कुल,
0: जीवन के अनुभवों के आधार पर ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया को नई तालीम अनुबंध कहती है। अनुबंध जीवन और ज्ञान का मेल करता है अंजलि जी। वहीं गांधी जी के शिक्षण संबंधित इन विचारों ने देश व दुनिया के शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान आकर्षित किया था।
2: जी हाँ कशिश, तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हम जान पा रहे हैं रचनात्मक कार्यक्रम में कुछ महत्वपूर्ण बातों को। ये बातें निरंतर आगे और भी कार्यक्रम के माध्यम से बनी रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।
0: बिल्कुल,

0: भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले।
1: चुप क्यों हो गए? और सुनाओ।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन, जिसमें हम जान रहे हैं सबके गांधी रचनात्मक कार्यक्रम के बारे में। श्रोता साथियों, गांधी जी के शिक्षण संबंधित इन विचारों ने देश व दुनिया के शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान आकर्षित किया था। शिक्षा शास्त्र के नए से नए सिद्धांतों के साथ ये विचार कशिश सुसंगत ठहरते थे।
1: बिल्कुल,
0: गांधी जी के विचारों के आधार पर शिक्षण के विविध प्रयोग करते हुए लोगों ने अलग अलग उम्र और ज्ञान मर्यादा के अनुसार उनमें गहरे उतरकर इस संबंध में बहुत सारे विवरण भी खोज निकाले थे। शुरुआत में गांधी जी के शिक्षण विचार प्राथमिक शिक्षण के क्षेत्र में आजमाए गए।

0: जिस शिक्षण को आधारभूत शिक्षण या बुनियादी शिक्षा कहा गया, इस विचार का विकास होते होते इसमें पूर्व बुनियादी, उत्तर बुनियादी और उत्तम बुनियादी या उच्च शिक्षण जैसी श्रेणियां बनाई गई। रचनात्मक कार्यक्रम बुनियादी शिक्षा के इस तमाम क्षेत्र को शामिल करता है। श्रोता साथियों, शिक्षण क्षेत्र में रचनात्मक कार्यों का दूसरा एक अंग वैसे तो नए पुराने सभी शिक्षण पर लागू होता है, पर देश की तत्कालीन परिस्थिति देखकर गांधी जी ने उस पर विशेष ध्यान दिया था। आज स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आधी सदी बीत चुकी है, तब इसका महत्व गांधी जी के काल में जितना था उससे जरा भी कम नहीं है। रचनात्मक कार्यक्रम की सूची श्रोता साथियों, गांधी जी के प्रांतीय भाषाएं और राष्ट्रभाषा दो अलग अलग कार्यक्रम रखे थे। प्रांतीय भाषा यानी कि संबंधित प्रांतों के लोगों की मातृभाषा पर हमारे पढ़े लिखे वर्ग ने उसकी अपेक्षा की और परिणाम एक तरफ लोग शिक्षितों से दूर होते गए और बहमा अंधश्रद्धा के अंधेरे में पड़े रहे, तो दूसरी तरफ सुशिक्षित लोग भी सामान्य जनता से अलग थलग पड़े गए।
1: जी हाँ दिलेश जी, साथियों वे देश की नब्ज को परख नहीं सकते हैं और अधिकांशतया विदेशी भाषा के माध्यम से विदेशी अनुकरण से बाहर नहीं आते। हमें यह भी समझना चाहिए कि देश की प्रांतीय भाषाएं सैकड़ों वर्षों पुरानी और कई तो हजार वर्ष से भी पुरानी संस्कृति की विरासत को संचित की हुई है।
0: बिल्कुल,
1: इसका संपर्क टूट जाए तो संस्कृति के साथ संपर्क भी टूट जाएगा। नरसी मीरा, तुलसी, सूर, कबीर, नानक और दक्षिण के संत व कवि, तत्वज्ञानी, सूफी, विज्ञान के ज्ञाता, इन सभी की विरासत के बिना आजकल के पढ़े लिखे लोग अंक विहीन शून्य जैसे हो रहे हैं।
0: जी हाँ
1: अंजलि जी, सामान्य जनता को भी ये समझना चाहिए कि संस्कार के सभी प्रगतिशील देशों में प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक तमाम शिक्षण मातृभाषा में ही दिया जाता है। भाषाएं चाहे जितनी सीखो, ज्ञान चाहे जितना प्राप्त करो, पर शिक्षण का माध्यम तो विद्यार्थी के लिए जो भाषा सरल व स्वाभाविक है वही होनी चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: गांधी जी जब शिक्षण अफ्रीका से स्थायी तौर पर भारत में रहने के लिए आए थे तब उन्होंने देखा कि यहाँ हर पढ़ा लिखा व्यक्ति अंग्रेजी में बोलने लिखने में अपना बड़प्पन समझता है।
0: जी हाँ,
1: गांधी जी ने आग्रह करके उनमें से बहुतों को मातृभाषा में बोलना शुरू कराया था।
0: जी हाँ,
1: एक समय गांधी जी द्वारा स्थापित गुजरात विद्यापीठ मातृभाषा में सर्वोच्च सेवा के लिए विख्यात भी थी।
0: बिल्कुल कशिश, देश में राष्ट्रभाषा की हालत भी दयनीय थी। पढ़े लिखे लोग यह सम्मान अंग्रेजी भाषा को ही देते थे। अलग अलग भाषा बोलने वाले दो व्यक्ति इकट्ठे होते तो वे अंग्रेजी में ही बातचीत करते।
1: कई
0: जाने माने गांधी जन भी राष्ट्रभाषा के ज्ञान से वंचित थे। गांधी जी ने श्रोता साथियों दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा स्थापित की, जहां लाखों तरुण वर्णियों को हिंदी सिखाई गई। अपने सबसे छोटे पुत्र देवदास को उन्होंने इस काम के लिए ही दक्षिणी भारत भेजा था।
1: बिल्कुल,
0: तो कशिश जैसा कि कार्यक्रम में हमने जाना सबके गांधी, रचनात्मक कार्यक्रम में कुछ महत्वपूर्ण बातों को, अगले रविवार विशेष कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से फिर से मुलाकात होगी इसी प्रकरण में कुछ प्रमुख बातों के साथ में।
1: जी हाँ,
2: नफरत

0: तो साथियों सुनना ना भूलिएगा कार्यक्रम गांधी आत्म दर्शन वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। नमस्कार।
1: सेहत नु राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात की शुरुआत पानी थकी करो, थोड़ू सी व्यायाम ने तात काढ़ी ने जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। भाई ने बोनो आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ नी छाव में आपड़े रह हां, या आपड़े नी कितली शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल हां, ई भी आपड़ा थकी कई आश रागे है। होवे अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा, प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा। होवे प्रकृति ने बचावो भविष्य ने हदारो। होवे आज नाना ना कदम है ई आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है। वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

बागर रेडियो 90.8 एफएम प्रस्तुत करता है जनता जनार्दन का जनता के लिए कार्यक्रम हम और हमारा संविधान। जी हां साथियों, भारतीय संविधान से जुड़ी तमाम जानकारियों को समुदाय तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य यही है कि सभी लोग संविधान की विकास गाथा को जानें और उसके उद्देश्यों को समझें।

साथियों, संविधान हमारी आन है, तिरंगा हमारी शान है, हिंदुस्तान हमारी जान है, हिंदुस्तान पर जान हमारी कुर्बान है। जी हाँ, ये हम सबकी पहचान है, इसको शत शत प्रणाम है, क्योंकि यह हम सबका अभिमान है।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हम और हमारे संविधान में। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से पिछले रविवार ये हमारी आपसे बातचीत रही थी भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की कहानी। इसी के साथ हमने औपनिवेशिक भारत का पहला ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज की अनुपस्थिति की पीड़ा, प्रतिरोध का पहला भारतीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज की पहल पिंगली वेंकैया की भूमिका, इसी के साथ हमने जाना था स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज चरखे की जगह कैसे आया चक्र।
1: जी बिल्कुल,
0: यही जानते हैं अशोक यानी अंतर्राष्ट्रीयता, तिरंगा यानी स्वाधीनता।
1: जी बिल्कुल, जागृति जी, नेहरू जी कहते हैं कि भारतीय इतिहास में अशोक का काल वास्तव में इतिहास का अंतर्राष्ट्रीय काल था।

0: वह संकीर्ण काल न था। यह वह समय था जागृति जी, जब भारतीय राजदूत सुदूर विदेशों में गए।
1: जी हाँ,
0: साम्राज्य और साम्राज्यवाद के रूप में नहीं, बल्कि शांति, सदाचरण और शुभकामना का संदेश लेकर। इसलिए जिस झंडे को आपको भेंट करने का सम्मान मुझे प्राप्त हुआ है, वह झंडा साम्राज्यवाद का नहीं बल्कि स्वतंत्र का झंडा है। और वह केवल हमारी स्वतंत्रता का नहीं बल्कि उन सभी मनुष्यों की, जो भी इसे देखे उनके स्वतंत्रता का चिन्ह है। यह दूर दूर तक पहुँचेगा, केवल वही नहीं जहाँ भारतवासी दूत तथा मंत्री के रूप में रह रहे हैं, बल्कि समुद्र पार जहाँ भारतीय जहाजों द्वारा यह ले जाया जाएगा। यह चाहे जहाँ कहीं भी पहुँच जाए, मैं आशा करता हूँ कि लोगों को यह स्वतंत्रता का संदेश देगा, मित्रता का संदेश देगा और यह संदेश देगा कि भारत संसार के प्रत्येक देश से मैत्रीपूर्ण संबंध रखना चाहता है।
1: जी हाँ।
0: और जो लोग स्वतंत्रता चाहते हैं, उसकी सहायता करना चाहते हैं।
1: बिल्कुल। इसी के साथ साथियों, आपको गांधी जी की नाराजगी को लेकर कुछ बातें बताएं। तो हालांकि जब महात्मा गांधी जी को पता चला था अंजलि कि राष्ट्रीय ध्वज में चरखे के चक्र के स्थान पर अशोक चक्र स्थापित किया गया है,
0: जी हाँ,
1: तो वे दुखी हो गए थे। उन्होंने कहा कि ऐसा ध्वज कितना ही सुंदर क्यों न हो, मैं उसे नमन नहीं करूँगा। वह बिना चरखे वाले राष्ट्रीय झंडे को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। साथियों, बाद में उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया और कहा कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बना चक्र अहिंसा का दिव्य कानून है।
0: जी बिल्कुल। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों, कांग्रेस का ध्वज राष्ट्रीय ध्वज न बने, यानी कि यह जानना दिलचस्प है कि स्वयं कांग्रेस ने यह सुनिश्चित किया कि कहीं कांग्रेस के झंडे को ही भारत का राष्ट्रीय ध्वज न बना दिया जाए। दरअसल स्वतंत्रता आंदोलन के समय प्रतीकात्मक ढंग से फहराए जाने वाले झंडे को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे के रूप में देखा जाता था।
1: जी हाँ।
0: आजादी से कुछ महीने पहले दिल्ली में एशियाई देशों का सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में मंच पर एशिया के सभी देशों के झंडे और उनके प्रतीक चिन्ह लगे थे, लेकिन भारत ने वहाँ कोई झंडा नहीं लगाया, क्योंकि भारत नहीं चाहता था कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दल आधारित राजनीति के लिए कोई स्थान हो।
1: बिल्कुल। इसी के साथ अगर राष्ट्रीय ध्वज और खादी के बारे में अंजलि हम हमारे श्रोता साथियों को बताएं, तो संविधान सभा ने चक्र युक्त तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार कर लिया।
0: जी हाँ।
1: इसके पश्चात 15 अगस्त 1947 यानी कि आजादी के दिन की तैयारी के लिए संविधान सभा कार्यालय ने किसी कपड़ा मिल को 3000 झंडे बनाने का आदेश दे दिया। जब इस बात का पता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चला, तो उन्होंने तत्काल उस आदेश को रद्द करवाया और 27 जुलाई 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखा कि हमें केवल हथकरघे से बने हुए झंडों का ही उपयोग करना चाहिए।
0: जी हाँ।
1: क्योंकि हमारी संविधान सभा के प्रस्ताव में ये उल्लेख नहीं था कि राष्ट्रीय ध्वज हथकरघे और खादी के होने चाहिए, इसलिए आवश्यक है कि इससे संबंधित निर्देश सभी शासकीय कार्यालयों को भेजे जाए। अगर कोई अन्य कपड़ा इस्तेमाल किया गया तो इससे बापू की भावनाओं को ठेस पहुँचेगी।
0: जी बिल्कुल।
1: 27 जुलाई 1947 को ही नेहरू जी ने इसका सहमति के साथ जवाब दिया और सभी कार्यालयों को खादी के कपड़े के ध्वज फहराने के निर्देश दिए।
0: जी बिल्कुल। यही बात करें श्रोता साथियों, भय हिंसा का प्रतीक नहीं है भारत का राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, तो श्रोता साथियों, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसी भी दृष्टि से भय या हिंसा का प्रतीक नहीं है। संविधान सभा के सदस्य एस नगप्पा ने उचित ही कहा था कि हमारा ध्वज यह भी बताता है कि देश क्या चाहता है। हम दूसरे देशों को कैद नहीं करना चाहते हैं, हम साम्राज्यवादी नहीं बनना चाहते हैं, हम दूसरे देशों को अपने सामने शीश झुकाते नहीं देखना चाहते हैं।
1: बिल्कुल। तो जैसा कि अंजलि हम बात कर रहे हैं कार्यक्रम हम और हमारे संविधान में, ये बातें हम आगे भी करेंगे, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में। जैसा कि जागृति जी गीत से पहले हमने जाना कांग्रेस का ध्वज राष्ट्रीय ध्वज न बने, राष्ट्रीय ध्वज और खादी के बारे में, भय और हिंसा का प्रतीक नहीं है भारत का राष्ट्रीय ध्वज, यही बात करते हैं तिरंगा सांप्रदायिक प्रतीक नहीं है।
1: जी हाँ
0: श्रोता साथियों, यह दुर्भाग्य की बात है कि आम जनता के एक वर्ग में यह गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की गई कि तिरंगे का केसरिया रंग हिंदुओं का तथा हरा रंग मुसलमानों का प्रतीक है। ऐसा करके देश के राष्ट्रीय ध्वज को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई, परंतु यह बात तथ्यात्मक दृष्टि से पूरी गलत है। यह एक ऐसा झंडा है जिसके बारे में अलग अलग बातें कही जाती हैं। कई लोग इसका गलत मतलब लगा बैठे हैं और वे इसे सांप्रदायिक नजरिए से देखते हैं। ये लोग मानते हैं कि इसका कोई हिस्सा इस या उस समुदाय की नुमाइंदगी करता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि जब यह झंडा तैयार किया गया तो कोई सांप्रदायिक संकेत इसमें नहीं जोड़ा गया।
1: जी हाँ बिल्कुल, भारत के वास्तविक आंदोलनकारियों ने सांप्रदायिकता के हर प्रतीक को निष्क्रिय करने का हर संभव प्रयास किया था। अंजलि, तिरंगे ध्वज की व्याख्या ऐसा ही एक प्रयास है। साथियों, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में भारत के राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार करने को लेकर हुई चर्चा में बेहद खूबसूरत दार्शनिक व्याख्या हुई।
0: जी हाँ।
1: संभवतः सभा के सदस्य चाहते थे अंजलि कि तिरंगे की कभी गलत व्याख्या न हो पाए।
0: जी हाँ।
1: ये भारत की पहचान बने। तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए सभा को यह अनुमान था कि राष्ट्रीय पताका का भी सांप्रदायिकरण करने की कोशिश होगी।
0: जी बिल्कुल श्रोता साथियों, यही बात करें तिरंगे की व्याख्या की तो श्रोता साथियों, संविधान सभा में पंडित नेहरू ने कहा था कि कुछ लोग इसके महत्व को न समझकर सांप्रदायिक रूप में सोचने लगे और यह विश्वास करने लगे कि अमुक भाग अमुक संप्रदाय का प्रतीक है। कहना चाहेंगे, लेकिन मैं यह कह सकता हूँ कि जब इस झंडे का रूप विचारा गया था तब इसके साथ कोई सांप्रदायिक चीज न थी। हमने झंडे के एक ऐसे नमूने का विचार किया था श्रोता साथियों, जो सुंदर हो, क्योंकि राष्ट्र का प्रतीक देखने में सुंदर होना चाहिए, जो अपने पूरे रूप में तथा पृथक पृथक भागों में राष्ट्र की प्रवृत्ति का, राष्ट्र की परंपरा का, हजारों वर्षों से भारत में प्रचलित उसके मिश्रित रूप का प्रतीक स्वरूप भी हो। इसमें अंदर सुंदर बातों का सादृश्य है, आत्मा संबंधी और मन संबंधी बातों का, क्योंकि कोई भी राष्ट्र केवल भौतिक वस्तुओं के आधार पर जीवित नहीं रहता, यद्यपि वे बड़ी महत्वपूर्ण है। जागृति जी, भारत ऐसा राष्ट्र जिसका अतीत बहुत प्राचीन है, अन्य उपकरणों पर भी जीवित रहता है और वह है आध्यात्मिक उपकरण।
1: बिल्कुल, सेठ गोविंददास ने कहा है अंजलि कि इस झंडे के तीन रंगों में सांप्रदायिकता नहीं है, किंतु एक समय ऐसा अवश्य था जब तीन रंगों यानी लाल सफेद और हरे रंग में सांप्रदायिकता थी।
0: जी जी,
1: जो लोग कहते हैं कि भगवा हिंदुओं का रंग है, उनसे मेरा कहना है कि यह गलत है। महाभारत के समय आपको मालूम होगा कि रंगों का कोई प्रश्न नहीं था, तब अर्जुन के रथ पताके पर हनुमान का चिन्ह था, कर्ण के रथ पर हाथी की पताका थी, इसलिए किसी रंग को हिंदुओं का प्राचीन रंग कहना ऐतिहासिक भूल है।
0: जी हाँ।
1: सर एस राधा कृष्णन ने कहा है कि लाल नारंगी और केसरिया रंग त्याग की भावना दिखाते हैं। कहा गया है कि सर्वे त्यागा राज धर्मेशु दृष्टा, अर्थात त्याग के समस्त रूप राजधर्म के अंतर्गत है। दार्शनिक को राजा होना चाहिए, वह ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिनमें त्याग की भावना कुट कुट कर भरी हो।
0: जी हाँ।
1: साथियों, वह त्याग जो इतिहास के आरंभिक दिनों से ही इस केसरिया रंग ने हमें भरा है, ये सिद्ध करता है अंजलि कि संसार धनाढ्यों का नहीं है,
0: जी जी,
1: संपन्न व्यक्तियों का नहीं है,

0: सूर्य पृथ्वी की दशा बतलाता है। वह तप्त दशा जो भारतीय सूर्य की भीषण ताप द्वारा हो जाती है, जबकि मोती समान श्वेत स्वच्छ जल वृष्टि होती है और वह जल बर्फ से गढ़ी हुई पहाड़ियों से नदियों में आता है, तो हमारी मरुभूमि भी हरित भूमि में परिवर्तित हो जाती है।
1: जी हाँ,
0: जिसकी उपज हमें जीवित रखती है और जन समुदाय की वृद्धि के लिए उत्पादन करती है।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों में सफेद रंग पवित्रता का चिन्ह है। मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इस उत्तम विचार के लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपने मत का चिन्ह सफेद टोपी रखा है। झंडे का सफेद भाग हमें ये याद दिलाता है कि हम केवल शब्दों में ही नहीं वरन कर्मों में भी पवित्र हैं। हमें सदैव यह स्मरण रखना चाहिए जागृति जी कि हम यहाँ केवल अपने भौतिक लाभ के लिए नहीं बल्कि अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी हैं। यह चक्र धार्मिक चिन्ह है और हम अपने धार्मिक वातावरण से अपने सामाजिक जीवन का विच्छेद नहीं कर सकते।
1: बिल्कुल अंजलि, सेठ गोविंदास ने कहा है कि यदि हम हरे रंग पर दृष्टि डालें तो मालूम होगा कि एक समय यह रंग स्वतंत्रता संग्राम के झंडे का रंग था। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में हमारे झंडे का रंग हरा ही था। उस समय यह रंग हरा रंग न केवल मुसलमानों का रंग था, न केवल हिंदुओं का भी रंग था, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम में जूझने वाले सभी लोगों का रंग था।
0: इसी के साथ इस राधा कृष्णन ने हरे रंग की व्याख्या करते हुए कहा है जागृति जी कि यह रंग यहाँ की वनस्पति जीवन से है, जिस पर हम सब सभी प्राणी मात्र निर्भर हैं, हमारा संबंध प्रकट करता है। हमको इसी हरित भूमि पर अपना स्वर्ग बनाना चाहिए। यदि हमें इस प्रयत्न में सफल होना है तो हमें श्वेत का अनुसरण करना चाहिए, धर्म चक्र का पालन करना चाहिए, आत्मनियंत्रण और त्याग की नीति ग्रहण करनी चाहिए। यह पताका हमें आदेश देती है कि सदैव तत्पर रहो, सदैव प्रगति करते रहो, आगे बढ़ो, स्वतंत्र परिवर्तनीय दयावान सभ्य और प्रजातंत्रात्मक समाज की स्थापना करने का प्रयत्न करो, जिसमें ईसाई सिख मुसलमान हिंदू बौद्ध सभी शरण में आ सके।
1: जी हाँ, तो जैसा कि अंजलि आज हमने बहुत ही अच्छी बातें की कार्यक्रम हम और हमारे संविधान में, अंत में कहना चाहेंगे हमारे श्रोता साथियों को कि झंडा हिंदू का नहीं, मुसलमान का नहीं, ईसाई का नहीं, यहूदी का नहीं, जैन सिख बौद्ध किसी का नहीं, ये झंडा सारे हिंदुस्तान का है। इन्हीं कुछ पंक्तियों के साथ आज के इस कार्यक्रम को विराम देना चाहेंगे।
0: जी हाँ,
1: अगले रविवार ये कार्यक्रम में फिर से मुलाकात होगी एक नए प्रकरण के साथ में, उसमें हम जानेंगे राष्ट्रीय ध्वज आदिवासी दृष्टिकोण।
0: जी बिल्कुल
2: साथियों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम हम और हमारा संविधान। अगले रविवार को फिर मुलाकात होगी संविधान से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।

घर तक ही निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। मानी दुआ, पितानी उम्मीद, मिसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था नाना अंजलि बुन हूँ था का अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदी है ये हुकी जाएंगा खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा। ओ अंजलि बुन एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है। होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है। होवे अंजलि पुन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो। आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा। होवे होवे जागृति पुन, आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो। वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। मैं अणी माटी में जन्मी हूँ, अणी माटी तकीस जानी जाऊँ हूँ। मैं खेत

0: બીજ બોયા પસીનો વહાવ્યો વિશ્રમ કર્યો તો પાસે બાપ દાદાની જમીન માટે મારો અધિકાર કેમ નથી. સૂરી જન્મ તકી હકદાર હૈ, કાનૂને આ વાત માની હૈ, ના પડ્યા ફૂટે એનો હક્કો લઈ શકે, ના રિવાજ અને સચને બદલી શકે. બાપ દાદાની જમીન સૂર્યનો અધિકાર, સૂર્યનો હક, એની પહેચાન. વાગડ રેડિયો એવં વાગધારા સંસ્થા દ્વારા જનહિત મે પ્રસારિત.
1: નમસ્કાર સાથીઓ, આઈએ સુનતે હૈ કાર્યક્રમ દાદી માં કી રસોઈ. નમસ્કાર સાથીઓ, આપ સભી સુન રહે હૈ કાર્યક્રમ દાદી માં કી રસોઈ, આપકે અપને સામુદાયિક રેડિયો વાગડ રેડિયો 90.8 FM પર. મેં હું આપ સભી કે સાથ આપકી અપની દોસ્ત કશિશ પારશર. સાથીઓ, જૈસા કે આપ સભી જાનતે હૈ કે આજ વાર રવિવાર કા દિન હૈ, और हर रविवार को हम कार्यक्रम दादी माँ की रसोई के माध्यम से एक नई स्वास्थ्यप्रद व्यंजन विधि को लेकर हाजिर हो जाते हैं. तो आज भी कार्यक्रम में एक नए व्यंजन को लेकर मैं जुड़ चुकी हूँ आप सभी के साथ. साथियों, आज हम बनाने वाले हैं 5 मसाला वाला पराठा. जी हाँ, क्योंकि साथियों ये पराठा सिर्फ पेट नहीं भरता बल्कि शरीर को भी ताकत देता है. हम देखते हैं श्रोता साथियों कि आज के इस कार्यक्रम में जो व्यंजन हम बना रहे हैं 5 मसाला पराठा, वह न सिर्फ स्वाद में लाजवाब है बल्कि सेहत में भी शानदार है और बनाने में भी बेहद आसान. तो आज के इस कार्यक्रम में ढेर सारी बातें हम करेंगे इस विषय को लेकर. आपसे जानेंगे कि इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी और हम इसे कैसे बना सकते हैं. तो बातें ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है. तो आइए साथियों, पहले मनोरंजन कर लेते हैं हम इस गीत के साथ में. फिर मैं आपको बताऊंगी कि 5 मसाला पराठा बनाने के लिए हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी. तो आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में.

साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में। जैसा कि साथियों, गीत से पहले मैंने आपको आज के इस कार्यक्रम में मेरी आपसे कौन सी बातचीत की रेसिपी रहने वाली है ये तो बता ही दिया। आज हम बात कर रहे हैं श्रोता साथियों, पांच मसाला पराठा विधि के बारे में। अगर इसकी सामग्री के बारे में आपको बताऊं दोस्तों, तो सबसे पहले आप पेन और कॉपी ले लीजिए, मैं आपको इसकी सामग्री बता देती हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं साथियों, इस व्यंजन को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम आटा लगाने के लिए लेंगे गेहूं का आटा, नमक स्वाद अनुसार, पानी हमें चाहिएगा आवश्यकता के अनुसार जो कि हम आटा गूथने के लिए उपयोग में लेंगे। इसी के साथ ही हमें पांच तरह के मसाले चाहिए होंगे, जैसे कि हम जीरा लेंगे एक छोटा चम्मच, धनिया पाउडर एक छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच, हल्दी आधा छोटा चम्मच, गरम मसाला आधा छोटा चम्मच। तो साथियों, ये तो हमारे पांच मसाले हो गए। इसी के साथ और भी सामग्री आपको चाहिए होगी। बारीक कटा हुआ प्याज आप लें, हरी मिर्च एक या दो, वो भी बारीक कटी हुई होनी चाहिए, हरा धनिया आप थोड़ा सा ले लें कटा हुआ, नमक का इस्तेमाल करें स्वाद अनुसार, और तेल और घी की आवश्यकता होगी जिसका उपयोग हम पराठों को सेंकने के लिए करेंगे। तो दोस्तों, ये तो सामग्री रही। अगर आपने नहीं लिखी है तो मैं फिर से सामग्री दोहराना चाहूंगी, ताकि अगर कुछ लिखना छूट गया हो तो आप उसे लिख सकते हैं। श्रोता साथियों, आटा बनाने के लिए हमें सबसे पहले गेहूं का आटा लेना है 2 कप, नमक स्वाद अनुसार, पानी का हम इस्तेमाल करेंगे आटा गूंथने के लिए वो भी आवश्यकता अनुसार, पांच तरह के मसाले का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे जैसे कि जीरा एक छोटा चम्मच, धनिया पाउडर एक छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच, हल्दी पाउडर एक छोटा चम्मच या फिर आप आधा छोटा चम्मच भी ले सकते हैं, गरम मसाला आधा छोटा चम्मच। इसी के साथ कुछ अन्य सामग्रियां भी हैं, जैसे कि बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, हरा धनिया थोड़ा सा बारीक कटा हुआ, नमक स्वाद अनुसार, तेल और घी का इस्तेमाल करना है जो कि पराठे सेंकने के लिए हम यूज करेंगे। तो दोस्तों, ये तो सामग्री यहाँ पर पूरी हो गई। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप इसे बनाएंगे कैसे, यानी कि बनाने के लिए आपको करना क्या है। साथियों, अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब ही श्रोता साथियों, स्वाद का असली राज इसमें छिपा हुआ है। सबसे पहले आटे में नमक डालकर पानी से नरम आटा आपको गूंथ लेना है और उसे 10 से 15 मिनट के लिए ढक कर रख देना है। दूसरा काम आप करेंगे मसाला तैयार करने का। एक बाउल में आपको लेना है प्याज जो कि बारीक कटे हुए होंगे, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, और जो पांच मसाले हमने लिए थे यानी कि जीरा, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक। अब इसमें श्रोता साथियों, थोड़ा सा नमक डालकर आप अच्छे से इसे मिक्स कर लें। अब आटे की लोई बनाएं, जो कि आपने आटा पहले से गूंथ कर रख रखा था उसकी आप लोई बना लें। उसे थोड़ा सा बेलें श्रोता साथियों, बीच में मसाला भरें और फिर बंद करके हाथ से फिर से बेल लें। इतने में आप पास में तवा गर्म होने के लिए रख दें पहले से ही। तवा गर्म अगर हो जाए तो उस पर पराठे को डालें, दोनों तरफ से घी या तेल लगाकर सुनहरा होने तक सेंके श्रोता साथियों। और अब देखिए, गर्मा गर्म पांच मसाला पराठा बनकर तैयार है। आप इसे श्रोता साथियों सॉस या किसी भी सूखी सब्जी के साथ खा सकते हैं। ये काफी खाने में स्वादिष्ट लगता है और हमारे सेहत के लिए भी बेहतर है। तो जैसा कि बातें बहुत अच्छी चल रही है, आगे हम कार्यक्रम के माध्यम से इस व्यंजन के फायदों के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मनोरंजन करवाना चाहूंगी यहाँ पर एक गीत के साथ में। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में।

श्रोता साथियों, गीत तो यहाँ पूरा हो गया और गीत से पहले जैसा कि हमारे पराठे बनकर तैयार हो चुके थे, अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस व्यंजन को बनाने से क्या क्या फायदे होंगे। तो सबसे पहले तो श्रोता साथियों, इस व्यंजन को बनाने में हमने जो गेहूं के आटे का उपयोग किया है वो हमें ऊर्जा देता है। अगर मसालों की बात करूं तो जिन मसालों का हम इसमें उपयोग कर रहे हैं वो पाचन को बेहतर बनाते हैं और किसी भी प्रकार से नुकसानदायक नहीं है। प्याज का इस्तेमाल भी जैसा कि हमने किया, जो कि शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है साथियों, तो ये भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि शरीर के लिए लाभदायक है ही। और जो मसाले हम इसमें उपयोग में ले रहे हैं वो मेटाबॉलिज्म को भी तेज करते हैं, तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। ये पराठा श्रोता साथियों, हम खासकर बच्चों और युवाओं के लिए जरूरी है क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इससे बढ़ेगी। अब साथियों, इस व्यंजन से जुड़े कुछ सुझाव है जो मैं आपको देना चाहूंगी। जैसे कि आटा आपको ज्यादा सख्त नहीं गूंथना है, आटा आपको नरम ही गूंथना है, क्योंकि अगर

आप जब आटे को सख्त गूथेंगे श्रोता साथियों, तो हो सकता है कि आपके पराठे सॉफ्ट ना बने। इसी के साथ मसाले का पेस्ट जो आपने तैयार किया है वो ज्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए। पराठे को हमें धीमी आंच पर ही सेकना है साथियों। घी का और तेल का अगर हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें अगर हम घी का इस्तेमाल करते हैं तो स्वाद और सेहत दोनों बढ़ेगी। और अगर आप चाहें श्रोता साथियों, तो इसमें आलू या पनीर भी मिला सकते हैं, ये भी एक अच्छा कह सकते हैं कि सुझाव है। तो दोस्तों, ये तो हमारे आपसे सुझाव पूरे हुए, क्योंकि हम देखते हैं कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम फास्ट फूड की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं। लेकिन साथियों, असली स्वाद और सेहत तो हमारे घर की रसोई में ही है। और कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में हम ऐसे ही विधियाँ आपके लिए लेकर आते हैं, जो आप घर पर बनाकर अपने स्वाद की पूर्ति कर सकते हैं साथियों। क्योंकि जब भी हमें कुछ चटपटा खाने का मन करता है, तो हम घर पर ही इन चीजों को बनाकर हमारी जो इच्छा है उसकी पूर्ति कर सकते हैं। क्योंकि श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि जो घर का खाना होता है वो सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि दिल को भी खुश करता है। तो दोस्तों, ये थी आज के इस कार्यक्रम में हमारी आपसे बातें। अब जैसा कि बातें ढेर सारी हो चुकी हैं, समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। तो विदा तो मैं जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले आपको मनोरंजन करवाना चाहूंगी एक और गीत के साथ में। आप बने रहिएगा कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में।

श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम दादी माँ की रसोई अब यही समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ साथियों कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी मेरी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, हमारा पता है कार्यक्रम दादी माँ की रसोई, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए साथियों आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे एक नए कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में एक नई रेसिपी विधि और सामग्री के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपके अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल।

0: जैसे जो बच निकलता है, तेरी आंखों में डूब जाता है।
1: नई गजल इसके पोएट हैं अब्दुल हमीद आदम मरहूम, तो उनकी गजल पेश कर रहा हूं।

समझ तो गए होंगे कि मैं समझाऊं। हाँ बोलो, मेरा ख्याल समझ गए। हाँ चलो अच्छी बात है। है हुस्न का फुसों भी इलाज फिसुलदगी, रुख से नकाब उठा कि तबीयत उदास है। हुस्न वाले को कहा जा रहा है कि ये इलाज है फिसुलदगी का, बेचारगी का, बीमारी का। बेचारगी बीमारी को नहीं कहते, लेकिन बेचारगी और कई तरह की होती है। हाँ उसका इलाज भी है इसमें।

पेश कर रहा हूँ, उसके बाद दादरा भी पेश करूँगा इसी का चंद मिनट के लिए। ये मेरे उस्ताद मोहतरम उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब और उनके छोटे भाई उस्ताद बरकत अली खान साहब, ये लोगों का गाया हुआ है, इसलिए मैं इसको बड़ी अकीदत से भी गाता हूँ।

वादा किया था शायद इंटरव्यू में भी और वैसे भी होना ही चाहिए, कुछ नई गजलें जो आप आज ही सुनेंगे वो भी पेश करूंगा और आपकी पसंद की बाकी की जो आपने सुनी हुई है वो भी पेश करूंगा। तो लीजिए पहले सबसे आपकी खिदमत में ये नई गजल है, इसके शायर हैं और शहजाद साहब, पेश कर रहा हूँ।